0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: बुधवार 17 जून रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं सुमिता की ओर से। नमस्कार स्वीकार करें, घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं, समय हुआ है समाचार का।
3: आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज। रजनी जी से नमस्कार।
4: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। पुराने व्यवसाय मंत्री सुदेश कालीचरण और पूर्व वित्त मंत्री रंगनाथन पेरियाची कल से हिरासत में, उन्हें फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की ओर से 2023 में ईंधन खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया था। इन दोनों ही पुरुषों को आज बुधवार को भ्रष्टाचार के अस्थायी आरोप के चलते अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों ही पूर्व मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन के अस्थाई आरोप। आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी समय सारिणी में बदलाव। माओवाकवा की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है, अब से यहां पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध। संबंधित इलाके वाकवा, क्यूपिप, कैट्रबोन, बोबा सैं रोसिल, मोका सैंपियर और रिवियनो जिले के एक भाग में। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक ने लोगों से पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की। इन पिछले सप्ताहों के दौरान तापमान में बदलाव के चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शन के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज। सैनिटरी अधिकारी इस वृद्धि से चिंतित हो चले। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से डॉक्टर फाजिल कोदाबाकस ने कहा कि अभी कई वायरस मौजूद जिसके मद्देनजर ऐसी स्थिति बनी हुई है। विदेश समाचारों में फ्रांस के एवियन शहर में G7 बैठक, आज भारत अमेरिका के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग, 2000

0: एकड़ से अधिक का इलाका चपेट में। भारत में मौसम का महा अलर्ट, दिल्ली यूपी समेत 21 राज्यों में भारी बारिश, आंधी की चेतावनी, पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा। विश्व फुटबॉल कप वर्ल्ड कप के अंतर्गत खेले गए मैच में अभी तक हाफ टाइम पर अर्जेंटीना अल्जीरिया को 1-0 से हरा रहा है। उधर नॉर्वे ने इराक को 4-1 से पराजित किया। फ्रांस ने सेनेगाल को 3-1 से हराकर जीत हासिल की। और फुटबॉल के ही क्षेत्र में किलियान एम्बापे ने फ्रांस में इतिहास रचा। फ्रांस के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बने ओलिविये जिरू और जस्ट फोंटेन से भी आगे निकल पड़े। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में मौसम का हाल।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: कमजोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हुए हैं वे हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटू पर। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पश्चिमी एवं दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 23 एवं 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 एवं 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह 6:43 पर सूर्योदय, जबकि शाम 5:38 पर सूर्यास्त।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یہ RM3 ہے پر ویزا کا ساتھ ہے اردو نشریات بنام سبا الخیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ تمام سامعین خیریت اور عافیت سے ہوں گے روشنیوں رحمتوں اور برکتوں سے سجی اس سے خوبصورت نشریات میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں مزید سامعین یہ وہ لمحات ہیں جب دل ذکر الہی سے منور ہوتے ہیں روح کو سکون ملتا ہے اور ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے تو آئیے مزید سامعین اس سے روح پرور محفل کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کا بابرکت کلام سے جو سراپا ہدایت اور سراپا نور ہے بغور و با ادب سماعت فرمائیے تلاوت قرآن پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हिकमत की भरी हुई किताब की आयतें हैं, नेकुकारों के लिए हिदायत और रहमत, वो जो नमाज की पाबंदी करते और जकात देते हैं, और वही हैं जो आखिरत का यकीन रखते हैं, यही अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब हैं।

और लोगों में बाज ऐसा है जो बेहुदा हिकायतें खरीदता है ताकि लोगों को बेसमझे अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे और उससे हंसी करे। यही लोग हैं जिनको जलील करने वाला अजाब होगा। और जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो अकड़ कर मुंह फेर लेता है, गोया उनको सुना ही नहीं। जैसे उसके कानों में सिकल है, तो उसको दर्द देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो।

जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए नेमत के बाग हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है और वो गालिब है, हिकमत वाला है।

उसी ने आसमानों को सुतूनों के बगैर पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो, और जमीन में पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि वो तुमको लेकर डोलने न लगे, और उसमें हर तरह के जानवर फैला दिए, और हम ही ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उसमें हर किस्म की नफीस चीजें उगाई। ये तो अल्लाह की तखलीक है, अब मुझे दिखाओ कि अल्लाह के सिवा जो हस्तियां हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। हकीकत यह है कि ये जालिम खुली गुमराही में है।

और हमने लुकमान को दानाई बख्शी कि अल्लाह का शुक्र करो, और जो शख्स शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हमदो सना है।

और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, शिर्क तो बड़ा भारी जुल्म है।

और हमने इंसान को जिसे उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है। मैंने ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है।

और अगर वो दोनों तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मानना। हाँ, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना, और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रास्ते पर चलना। फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है तो जो काम तुम करते रहे हो सबसे तुमको आगाह कर दूंगा।

लुकमान ने यह भी कहा कि बेटा अगर कोई अमल चाहे राई के दाने के बराबर भी छोटा हो और हो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में मख्फी हो या जमीन में, अल्लाह उसको कयामत के दिन ला मौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बारीक भी है, खबरदार है। बेटा नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना और जो मुसीबत तुझ पर वाके हो उस पर सब्र करना, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं।

और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेख खोरे को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त जरा आवाज नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज गधों की सी है और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की होती है।

क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सबको अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया है और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, न इल्म रखते हैं और न हिदायत और न किताब रोशन। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो तो कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया। भला अगरचे शैतान उनको दोजख के अजाब की तरफ बुलाता हो तब भी

और जो शख्स अपने आप को अल्लाह का फर्मा बरदार कर दे और नेकुकार भी हो तो उसने मजबूत कड़ा थाम लिया और सब कामों का अंजाम अल्लाह

और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया तो बोल उठेंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर समझ नहीं रखते।

और अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी स्याही हो और उसके बाद सात समंदर और स्याही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है।

अल्लाह को तुम्हारा पैदा करना और जिला उठाना एक शख्स के पैदा करने और जिला उठाने की तरह है, बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है।

क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है। हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है और ये कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। ये इसलिए कि अल्लाह की जात ही बरहक है और जिस जिस को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो सब बातिल है। और ये कि अल्लाह ही आली रुतबा है, गरामी कद्र है।

क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही की मेहरबानी से कश्तियां समंदर में चलती हैं ताकि वो तुमको अपनी कुछ निशानियां दिखाए। बेशक इसमें हर सब्र करने वाले शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं।

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: और जब इन पर समंदर की लहरें सायबानों की तरह छा जाती हैं तो अल्लाह को पुकारने और खालिस उसकी इबादत करने लगते हैं, फिर जब वो उनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो चंद ही लोग इंसाफ पर कायम रहते हैं और हमारी निशानियों से वही इनकार करते हैं जो अहद शिकन हैं ना शुक्र हैं।

0: लोगो अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि न तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और न बेटा बाप के कुछ काम आ सके। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे और न वो बड़ा फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे।
1: عنده علم الساعة وينزل

0: अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है और वही मैं बरसाता है और वही हामिला के पेट की चीजों को जानता है, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह ही जानने वाला है और खबरदार है।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। अभी आपने कलाम इलाही की वो मुबारक आयात समात फरमाई जिनकी रोशनी दिलों को मुनव्वर करती है, रूह को सुकून बख्शती है और ज़िंदगी को मकसद अता करती है। कुरान मजीद वो सर चश्मा हिदायत हैं जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है। अल्लाह हम सब को कुरान समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मजीद सामीन, आज के इस बाबरकत लम्हे में जब मुहर्रमुल हराम का चांद हमारे सरों पर साया फिगन है, आइए अपने दिलों को अल्लाह ताला की याद से आबाद करें, अपनी ज़बानों को उसकी हम्द सना से मुअत्तर करें और अपने रब करीम के हुजूर अकीदत के फूल निचावर करें। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही बातिन। हर नेमत उसी की अता, हर सांस उसी का करम है।

0: वही है मुस्तकहे हम्द व सना, वही है खालिक हर दो जहां, किसी के हाथ में है जमा में कुदरत, किसी का हुक्म है अर्ज़ व समा पर। सामिन कराम, आप सबको माह मुहर्रम हराम की आमद मुबारक हो। मुहर्रम इस्लामी तकवीम का पहला महीना है। ये अजमत, हुर्मत, सब्र, इस्तिकामत और कुर्बानी का पैगाम लेकर आता है। ये वो महीना है जो हमें अल्लाह ताला की अताअत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहले बैते अतहार रिद्वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। तो आइए मुअज़्ज़िज़ सामईन समाअत फरमाइए जामा मस्जिद के खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक क़ादर रज़वी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का ये मुख्तसर मगर बसीरत अफरोज़ बयान, जो मुहर्रम की मुनासिबत पेश खिदमत है।
1: नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला मुस्तफा व अला आलिही व असहाबिहिल मुज्तबा أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: अल्लाह जल्ल मजदहू की मारिफत के अनवार को अपनी आँखों का सुरमा बना लिया तो वो अनवार इलाहिया के लिए ये कान के बाद सरापा ये कान और ईमान के साथ सरापा ईमान हो गए और वो मुसलसल जन्नत वाली रिहाइश गाहों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर तुम उनको देख लो तो ज़रूर ऐसी कौम को पाओगे जिनकी रूहें शौक़ से अल्लाह की तरफ उड़ रही हैं और इनके बदन अल्लाह जल्ल मजदहू के अहकाम मानने और शरीयत व सुन्नत की पाबंदी के साथ आबाद है। इनकी जानें अल्लाह अज़ीज़ के फ़ैसलों पर साबिर हैं, शाकिर हैं। जब वो लोग रोज़ादार ना हो तब भी वो रोज़ादार होते हैं, मोहताजी के डर से सख्त तारीख रातों में अल्लाह जल्ल मजदहू के साथ मामलात की तिजारत की तरफ खड़े होते हैं, रातों को क़याम करते हैं, इबादत में पूरी रात गुजारते हैं। जब दुनिया के लोग खुशियां मना रहे हों तो वो अल्लाह वाले जिनके दिल अल्लाह की मारिफत से रोशन है वो गमगीन होते हैं। जब बेकार और वसवसों वाले लोग हंसते हैं तो उस वक्त वो अल्लाह के डर से रो रहे होते हैं। इनके दिल अपने मौला की वो आज़मत देखते हैं जो ज़ाहरी आँखों पर मख्फी होती है, जो ज़ाहरी आँखों से नज़र नहीं आती, और इनके बातिन आला किस्म के काजल के साथ खूबसूरती के साथ मुज़य्यन होते हैं। सो वो ज़मीन की सतह की तरफ मुस्तैदी की राह पर होते हैं। अब ये मुकाम है सालहीन का। वो कौन हैं? वो अंबिया हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सालहीन हैं, वो अहले बैत एज़ाम हैं, वो सहाबे किराम हैं, वो उलमाए हक हैं और वो औलियाए हक हैं जिनको अल्लाह पाक ने अपनी मारिफत का नूर अता करके दुनिया और दुनिया में जो है उन सब से बेनियाज किया। अल्लाह पाक उनके तुफ़ैल हमें भी अपनी मारिफत के जाम अता करे और अपनी मारिफत की रोशनी अता फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद।
1: सामईन कराम, अभी आपने जामा मस्जिद के खतीब आली हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ईसा कादरी रज़वी साहब का नहायत फ़िक्र अंगेज़, ईमान अफरोज़ और बसीरत से भरपूर बयान समात फरमाया। ये RM फ्री हैं और आप सुन रहे हैं उर्दू नशरियात असबाल खैर सुबह के 7 बजे तक। मज़ीद सामईन, मुहर्रम सिर्फ़ एक नए

साल का आगाज नहीं बल्कि अपने माजी का मुहासिबा करने, हाल को सवारने और मुस्तकबिल के लिए नेक इरादे बांधने का एक सुनहरी मौका भी है। ये महीना हमें इबादत, जिक्र इलाही, तिलावत कुरान, सदका व खैरात और नेकियों में इजाफा करने की दावत दे।

अकीदत मन सामईन, मुहर्रम का तस्करा आते ही तारीख इस्लाम का वो अजीम बाप भी याद आता है जिसे करबला के नाम से जाना जाता है। करबला सिर्फ एक मैदान का नाम नहीं बल्कि हक, सदकात, सब्र, वफा और कुर्बानी की एक ऐसी दास्तान है जो रहती दुनिया तक इंसानियत को रोशनी फराहम करती रहेगी। मज़ीद सामीन, करबला हमें ये दर्स देती है कि हक का रास्ता अगरचे मुश्किल हो सकता है लेकिन उसमें इज्जत और कामयाबी पोशीदा होती है। बातिल वक्ती तौर पर गालिब नज़र आ सकता है मगर हकीकत फतेह हमेशा हक ही की होती है।

शामिल मोहतरम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला और उनके जानिसार साथियों ने हमें सब्र का सबक दिया। जब पानी बंद कर दिया गया, जब मुसीबतें बढ़ती चली गई, तब भी उनके कदम मुतजलजल ना हुए। उनके ईमान, इस्तिकामत और अल्लाह पर तवक्कुल ने साबित कर दिया कि एक सच्चा मुसलमान हालात का गुलाम नहीं बल्कि अपने अल्लाह का फरमा बरदार होता है। मज़ीद सामीन, करबला का पैगाम सिर्फ आंसू बहाना नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगियों में सच्चाई, अदल, दयानत, सब्र और कुर्बानी को अपनाना है। अगर हम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला की याद मनाते हैं तो हमें उनके किरदार को भी अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाना होगा। अल्लाह ताला हमें मुहर्रम की बरकतों से मालामाल फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला और अहले बैते अतहार रिद्वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शरीक करें। तकनीकी मदद अंजू की रही है, शुक्रगुजार है हम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: 94.95
1: with RJ Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Jani Seyaranga.

0: जीवन चवर जीवता गुड़पेसाव कदा जूलियट
1: गुंटू तो मैजिक चेस्तारु मरोकरु तन डांस तो प्रेक्षकुलनु मेस्मराइज चेस्तारु चिन्मय गारी सिंगिंग इंका समंत गारी डांसिंग अंटे वाव कॉम्बो अनि अंटुन्नारु फैंस वालू सिंपली फैंटास्टिक मीरे मंटारु विनी चेप्पंडी

0: Continuous music. RM3.
1: चौराणु 95.6 98.2 तमें सांभळी रह्या छो RM3 रेडियो।

0: चलिए श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मनोरंजन है।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only.

चलिए श्रोता आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 10:45 हो चुके हैं स्टूडियो की घर में इस समय से लेकर 11:30 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। कार्यक्रम है भक्ति में शक्ति, हमारा सादर प्रणाम आप सभी सुनने वालों को। तो चलिए इस समय से लेकर आपके नाम हम करने वाले हैं ये प्यारा सा भक्ति गान। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को हम पूछते हैं, वो प्रथम पूजनीय है और आपको पता है उनको वरदान मिला है, सबसे पहले उनका नाम लेना ही अनिवार्य है ताकि जो भी कार्य करे इसमें हम सफलता पाए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, ये प्यारा सा भक्ति गान है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं।

चलिए ये श्रोता वो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज है बुधवार, बुधवार का दिन जो है आपको पता है आज का दिन हम भगवान गणेश जी को पूछते हैं, ये दिन उनको समर्पित है। और भगवान गणेश जो है विघ्नों को दूर करने वाले देवता है, और आज का दिन बहुत सारे लोग जो है उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत धारण करते हैं। और आपको पता है कि भगवान गणेश जो है उनको मोदक पसंद है, साथ में दुर्वा भी उनको प्रिय है। अगर आपके पास दुर्वा नहीं तो हरे हरे घास जो है उनको आप चढ़ा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम के अंतर्गत जो है चंद भक्ति गीत उनके नाम हम कर रहे हैं। तो चलिए ये अगला भक्ति गान हम एक चालीसा जो है आपके नाम हम करेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और आपको पता है चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है, मन को शांति हमें प्राप्त होती है।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: चलिए श्रोताओं, चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान आपकी सेवा में. आज का दिन जो है हम माँ सरस्वती को भी पूजते हैं, और आपको पता है कि माँ सरस्वती हमें ज्ञान बुद्धि देती है, और आज का दिन जो है बहुत सारे लोग जो है उनकी पूजा अर्चना करते हैं. तो चलिए इस कार्यक्रम में चंद भक्ति गान जो है माँ सरस्वती पर आधारित.

श्रोताओं कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ा धन है, इसे चोर नहीं चुरा सकता, कोई भी चुरा नहीं सकता। वैसे दीप से दीप जलते हैं, ज्ञान से ज्ञान बढ़ते हैं, बांटने से ज्ञान घटता नहीं और बढ़ता है।

तो चलिए श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम का समापन जो है हम कर रहे हैं कार्तिक के साथ, आप लोगों का साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वापस मिलेंगे कल, तो हमारी ओर से आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

好，听众朋友，民族的韵，心底的暖，今天的新月之旅就到这里跟您说再见了，把这份悠扬留进午后，我们下周同一时间再见。

0: दिन के 12 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे रजनी जी नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। पूर्व मंत्री सुदेश कालीचरण और रंगानाथन पदयाची को भ्रष्टाचार के अस्थाई आरोपों के चलते आज पोटली अदालत में पेश किया गया है। दोनों ही पुराने मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन के अस्थाई आरोप हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की तरफ से मैरिटाइम मर्सेंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से 2023 में ईंधन खरीदे जाने के एक

0: कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उन्हें बुलाया गया था और दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। आज बुधवार 17 जून से जल वितरण संबंधी कैलेंडर में बदलाव। जी हां, वागो वाक्वा की ओर से जिन इलाकों में पानी मुहैया किया जाता है, अब से यहां पर दिन में 5 से 6 घंटे तक पानी उपलब्ध। संबंधित इलाके वाक्वा क्यूपी कैट्रोबोन बुबास रोजिल मोका सैपिया और वियनो जिले के एक हिस्से हैं। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के निदेशक ने पानी जाया न करने और जिम्मेदाराना तरीके से जल का उपयोग करने की मांग की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले सप्ताहों के दौरान तापमान में बदलाव के चलते देश में स्वास्थ्य संबंधी इन्फेक्शन के मामलों में वृद्धि देखी गई है। सैनिटरी अधिकारी इस वृद्धि से चिंतित हो चले। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कई वायरस मौजूद हैं जिसके मद्देनजर ऐसी स्थिति बनी हुई है। विदेश समाचारों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि निवेशक और कारोबारी इस संभावना का आंकलन कर रहे हैं कि ईरान से जुड़ा संघर्ष समाप्त हो सकता है और हॉर्मुज जल मार्ग फिर से खुल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.72% गिरकर $78.39 प्रति बैरल आ गया है, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड लगभग 1% फिसल कर $75.35 प्रति बैरल पर पहुंच गया। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के अंतरिम समझौते से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद बाजार में बिकवाले का दबाव बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा, जबकि एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ईरान को तेल बेचने की अनुमति दी जाएगी। और स्पोर्ट्स न्यूज, विश्व फुटबॉल कप में अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच खेले गए मैच में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने खेल के 17वें, 60वें और 74वें मिनट पर गोल डाला। इस तरह उन्होंने 3 गोल बनाए, विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। उधर किलियान एम्बापे फ्रांस का रिकॉर्ड गोल स्कोरर बन गए। फ्रांस और सेनेगाल के बीच खेले गए मैच में फ्रांस ने सेनेगाल को 3-1 से हराया, जबकि नॉर्वे ने ईरान को 4-1 से पराजित किया। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में एक शोक समाचार। मिशन क्रॉस रोड लालमाची में 69 साल के 69 ओल्ड की श्रीमती ज्ञानती सुबा पैदाशी नाम ज्योति, जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनकी बेटी प्रियंका सुबा के घर मिशन क्रॉस रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी दिल हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio.

दिन के 12:05 हुए हैं। सुहाना सफर प्रोग्राम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं वेदिता, साथ रहूंगी दिन के 2 तक। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमारा साथ देने के लिए भी तैयार हैं। बुधवार 17 जून

0: सुहाना सफर।
1: सभी हमारे श्रोताओं को एक बार फिर विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। रेडियो मनोरंजन RM3 पर स्वागत है आपका। 12:09 हुए हैं और आज हैं 17 जून। जी हाँ, बस यूँ कह लीजिए कि जून महीने में बस आधा महीना तो चला गया और अब बस धीरे धीरे करके हम सोच ही रहे हैं कि इस साल का पूरा आधा साल निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हमें पता होता है जब हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। चले जी, सभी लिसनर्स का वेलकम करते हुए जितेंद्र दुलवा जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम में। सुल्ताना खानदाई, वी हैव हरिचंद्र पवन, नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो वीमी, कैसी हो? हमारे साथ हैं केशनी कुमार, हेलो, आपका स्वागत है। वैसे सुल्ताना कहती हैं कि आज मेरा बर्थडे है। अरे जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको? उम्मीद तो यही कर रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी ओर से बहुत सारा प्यार है। और अगला गाना आपके नाम है एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा ये जी आपके नाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी जीतन जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ दे रहे हैं आप। तो ऐसा करते हैं कि पूरे खानदाई परिवार की तरफ से सुल्ताना को हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, बहुत बहुत बहुत सारा प्यार आपके लिए। और यहाँ पर हमारे साथ शवि जुड़ गई हैं, चलिए उनका भी हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कविता जी कहते हैं गाने एंजॉय करें भाई, थैंक यू सो मच। एंड हमारे मुन्ना भाई MBBS

एस पी साथ में है इंदिरा नौबत जी, नमस्कार, स्वागत आपका। सूबी नमस्ते आपको भी। और यहाँ पर हमारे साथ हैं उत्तम, गीता, गीता कालीचरण और जज साहब। कैसे हैं आप? जज साहब को तो हमारे प्रोग्राम बहुत पसंद आते हैं और हमारे गाने बड़े पसंद आते हैं। तो चलिए, इसी के साथ जब सब आ ही गए हैं तो साथ साथ आगे बढ़ें।

सुहाना सफर सुहाना सफर तुम आ गए हो नूर आ गया है कहते हैं ना कि तुम आ गए हो नूर आ गया है तो चलो तीनों मिलकर सिनेमा चलें हमारे दोस्त का नाम है नूर इसीलिए ऐसा करते हैं आगे बढ़ते हैं आपके गीतों के साथ कुछ यहां पर मैसेजेस आए हैं नंबर आपको पता ही है और हमारे तो व्हाट्सएप नंबर है 5250

6200 यानी कि 5250620 और कॉल भी काफ़ी सारे आते हैं कासौदे कासौमस वसन जी 4028070 पर और बाकी हमारे जो डेडिकेशंस होते हैं वो आते हैं हमारे टिकटॉक से लाइव ठीक है। कविता माधुरी ज्योति और गाना होगा ज्योति जी मौसी देवीना और मौसा सुनील के लिए बना के आई कतिबा मंगर हमारे साथ शैलेंद्र मनी वीना फकीर नीता मनिक सुनीता सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जो हमारा अगला गाना होगा वैसे सुल्ताना कहते हैं कि कल मेरी ननद का बर्थडे है और अच्छा कल बर्थडे था ललिता जी का तो उनके लिए भी नेक्स्ट गाना और यहाँ पर श्यामा महरअली हमारे साथ हैं नमस्कार जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ थैंक यू सो मच। हेलो शाकिब कैसे हो आप थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हाय एमजे कैसे हो चलो जी तो यहाँ पर नेक्स्ट गाना फॉर स्वीट स्वीट याशना के लिए और ये गाना होगा आपके लिए दीप्ति जी जो हमारे साथ हैं। कभी कभी आप लोग गाने को मिक्स कर देते हो कभी अपने मैसेज को मिक्स कर देते हो मेरे लिए ज़रा समझना मुश्किल हो जाता है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ज़रूर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले गाने की ओर और आपके मैसेजेस भूलिएगा नहीं हमारा नंबर 5250620 और यहाँ पर हमारे साथ साहिल जुड़ गए हैं और हमारे साथ यहाँ पर साधना और मुकेश जुड़े हुए हैं लाल माटी से। तो जितने भी लोग हमें गाड़ी चलाते हुए सुन रहे हैं चलिए अगला गाना सुनते हैं। You're listening RM Free Radio.

0: सुहाना सफर
1: सुहाना सफर
0: सुहाना सफर हमारे प्रोग्राम का नाम है और यहाँ पर जो नेक्स्ट हम गाना लेकर आए हैं वो निघात तकोफ साथ में है डैनी जगरू फ्रॉम गुडलैंड्स अर्चना ढांडा न्यूजीलैंड से सुनीता सलेना है बोबासे से आकाश है लंदन से और वहीं पे लीना और अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ऐसा करते हैं खूबसूरत गीतों के सिलेक्शन में ये गाना भी हो जाए और यहाँ पर गीता जी स्कॉटलैंड से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हेलो कैसे हो लॉट्स ऑफ लव टू यू फ्रॉम मॉरिशस आकाश कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड ऑफ कोर्स ओल्ड इज गोल्ड चलिए ये गाना आपके नाम डेडिकेट कर दूं और साथ ही साथ उनके लिए जो परदेश में सुन रहे हैं हमें

0: सुहाना सफर
1: हम सफर मेरे हम सफर और ये है सुहाना सफर। भाई आपको सफर करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहिए, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। फिलहाल अभी के लिए मामा बसंती के लिए गाना होगा और पापा सुरेश के लिए ये है आकाश, भोला फैमिली के लिए गाना आरती सदाशिवन, हमारे साथ है आयशा, वीर सिंह, शिमला बिदादर, लवीना, कल्याणी हरी, आशा, इंदिरा और साथ में है लैला मुदारन जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, हमारे गीतों का एंजॉय कर रहे हैं। वैसे हमने एक रिक्वेस्ट की थी

प्लीज़ आप लोग जब गाने की फरमाइश करें ना, मेक श्योर आप मुझसे ऐसे गाने की फरमाइश ना करें जो कि मैं चला ना पाऊँ, क्योंकि हम नए गाने नहीं चलाते, सिर्फ पुराने गाने चलाते हैं। 70s 80s के एक दो गाने भी चला लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा शाम के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, और हमारे साथ है राम जो कहते हैं कि हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू। रेशमा किस्तू नमस्कार, और साथ में अभी जो हमारा गाना आ रहा है इसे हमने लिया है फिल्म क्रांति से, जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। दो दिन की जिंदगी है, कितना रोने के बारे में सोच रहे हो आप लोग। जिंदगी तो आंखें बस पलकें झपकते ही कभी कभी खत्म हो जाती है। स्वागत है आपका, चलिए सुनते रहिए हमारे साथ प्रोग्राम सुहाना सफर।

0: जिंदगी की ना छूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। चलिए दो घड़ियां मिलती हैं हमें आपके साथ बिताने के लिए। यहां पर नेक्स्ट गाना जीवासन पिरुमल, शर्वीश देवांश, सीता इक्वाया और सी श्वेता हैं। फैजल फ्रॉम ला डिफेंस फ्रांस कहते हैं वो एक्सपेक्टिंग हीट वेव्स टुडे, सो प्लीज टेक योर प्रिकॉशंस एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। वीना नोवेल फ्रांस से उनके हबी देव के लिए, प्रीति दुखिताराम और जयामणि के लिए पेश कार्यक्रम का अगला गाना।
1: RL Free Radio Radio Radio
0: चलिए इसी के साथ तनुजा अर्जुन का स्वागत करते हैं हम, जो हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर राम राम मनीता जी, कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हो? चलिए अनिल जी अगर हमें सुन रहे हैं साहिल, तो उनके लिए भी हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं। सूर्या आपके लिए जो फिजी से हमें सुन रहे हैं।

0: ब्यूटीफुल गाना आपके लिए लेकर आए हैं प्रोफेसर की फिल्म, प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म से. एंड बाकी कौन सा गाना होगा?
1: सुहाना सफर.
0: बाकी आज लग रहा है ना जैसे वक्त धीरे धीरे चल रहा है. अच्छी बात है. हमें टाइम भी मिलेगा गाना चलाने का. सो नंद, निशा भवानी फ्रॉम सूरीनाम, वी हैव कविता, अनू, सरोज, सुमारो फैमिली, एंड वी हैव रोहित यादव. हाय रोहित, कैसे हो? माया लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. आपका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में. एंड आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है. वैसे जर्मनी से मीनू अतवाल भी हमें सुन रही हैं. वी हैव स्वीटी, वी हैव सलोनी दोहा जी, उनके हबी और उनके बच्चों के लिए गाना. माया जी कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, चलो ठीक है. रोशन जी स्वागत है. एंड वी ऑल्सो हैव सुरेश जो कहते हैं उनके दोस्त रुबेन का आज बर्थडे है, सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. वी ऑल्सो हैव रंगराज, वी हैव राज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और यहाँ पर जो हमारा अगला गाना होगा, वैसे साहिल कहते हैं कि परी उड़ गई बादल में, तो हमारे पास हमारे नीले नीले बादल हैं.

0: एक्चुअली जी ये गाना आपको पसंद आया मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर नेक्स्ट गाना हम शालिनी रवि और नीरव के नाम डेडिकेट करते हैं। और परी कहती मैं तो उड़ गई, वैसे किसी ने भी कहा है, माया जी कहती हैं कि ये तो मस्त गाना हो गया जी।
1: RM3 Radio.
0: वैसे माया जी कहती हैं कि इट्स 9:45 AM इन लंदन और आप हमें एंटरटेन कर रहे हैं मॉर्निंग। आपकी तो मॉर्निंग जबरदस्त हो गई है ना अर्चना जी, थैंक यू फॉर लविंग द सॉन्ग।

0: RM3 Radio.
1: चलिए अब सुनते हैं यही खूबसूरत सा गाना दीप्ति।
2: बर्मन को उसके बचपन में देखा उस वक्त जब मैं मिस्टर जी बर्मन के फादर के साथ काम किया करता था। फिर कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि ये म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। ये वेस्टर्नाइज ज़्यादा करते थे म्यूजिक को, तो बर्मन साहब को ज़रा इस पर शिकायत होती थी। तो एक दिन हमसे कहने लगे कि भाई तुम इसके चाचा हो, तुम ज़रा इसको कहो। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा देखिए अंकल, बाबा बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीखूंगा, लेकिन मैं उनके राह पर नहीं चलूंगा, मैं अपना रास्ता कुछ अलग निकालूंगा। आर डी बर्मन एक एरा था, एक स्कूल था हिमसेल्फ, वो लेवल मेरे ख्याल में दोबारा आना आसान नहीं है।
1: चलिए तो ये गाना हम मुश्ताक खान, तरुण राम, सुरागिनी जो फिजी आइलैंड से मैं सुन रही हैं, सुचरण नावियन, नफिया, सादरा और माला, सरिता, इन सब के नाम डेडिकेट करते हैं। दीप्ति वैसे कहती है कि काशी मिलते में बारिश हो रही है, तो जो लोग ड्राइव कर रहे हैं ज़रा संभाल के गाड़ी चलाइएगा। और यहाँ पर हमारे साथ हैं सुगन शिमला, उनके नाम ये गाना हम खास तौर पर डेडिकेट करेंगे। और यास्मीन आदाब, आपका भी हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। गंगाराम फैमिली के लिए गाना होगा अशोक सुखवंती, रवि, जय सिंह, करिश्मा, कृति, और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए जो हमें ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं।

0: जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनके बिना जिंदगी अधूरी लगती है. चलिए तो ऐसे में जो हमारा अगला गाना है वो चला दें.
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: और ये गाना हम बबीता बुला की और साथ में रागिनी जी के लिए डेडिकेट करेंगे. शारदा लखनऊ, प्रेमा लक्ष्मण. वैसे अर्चना डांडा कहती हैं कि उनके यहाँ तो रात के 9 बजने ही वाले हैं भाई. चलो ऑलमोस्ट 9 PM ना आपके यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी घड़ी इशारा करिए कि 5 मिनट में हम बढ़ने जा रहे हैं 1 बजे के समाचारों की ओर. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में.

0: चिरे सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार
1: नमस्कार रौदाब पुरानी वित्त मंत्री रंगाना देन पर्याची और पूर्व श्रम मंत्री सुरेश कालीचरण ने कल रात पुलिस हिरासत में बताई आज दोनों करप्शन के अस्थाई इल्जाम के तहत पोटली की इंटरमीडिएट अदालत में पेश हो रहे हैं फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के दौरान मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की मॉरिशस शाखा की निदेशिका करीना निक्जिशक के फोन से प्राप्त कुछ जानकारियों के आधार पर इन दो पूर्व मंत्रियों से पूछताछ की जा रही है। पिट्रोली पैदावारों की खरीद के लिए 30 बिलियन रुपए के ठेके के संदर्भ में रंगानादेन पर्याची और सुरेश कालीचरण पर मुकदमा चल रहा है। 16 जून की तारीख दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतीकात्मक है। युवा दिवस मनाया जाता है जो 1976 में सोवियतों की घटना की याद में है। हजारों की तादाद में छात्रों ने उस वक्त भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। आज 50 साल बाद मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका की सफारत ने ओरेम गॉर्डन थियानो में एक औपचारिक रिसेप्शन का आयोजन किया। कल मनाए गए इस दिवस के मौके पर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम खास मेहमान थे। कूटनीतिक दल के मेंबरानों को भी की भी हाजिरी रही है। आज मुसलमान कौम के लिए नए साल का आगाज हुआ है। ये 1448 हिजरी है। मुहर्रम महीना एक मुकद्दस माह माना जाता है। सबसे अजीम वाकया करबला का है जब हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने दीन और हक के लिए अपनी जान दी थी। इस महीने की 10वीं तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है जिसे यौम आशुरा कहा जाता है। विदेश में G7 शिखर सम्मेलन में सभी नेता वचनबद्ध रहे हैं कि रूस की अर्थनीति पर दबाव बढ़ाना चाहिए, नए संकल्प का समर्थन करने और इसे तेजी से अमल में लाने के लिए हवाई प्रतिरक्षा ताकतों के अलावा इंटरसेप्टर्स को फराहम किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि वो गैस और तेल के क्षेत्रों में रूस पर अपनी पाबंदियां और ठोस करेंगे। और फुटबॉल में एक बार फिर फैंस ने मैदान के शेर लियोनेल मेसी का कमाल देखा। उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप हैट्रिक कायम कर दिया। अपने 16वें गोल करके लियोनेल ने साबित कर दिया कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। मेसी ने अल्जीरिया के मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए 3 गोल कर दिए। फुटबॉल परस्तारों के लिए यह मैच काफी यादगार रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड बॉडीजामुगत में 51 साल के 51 years old श्री सूर्यदेव सीबर्न जो सूरज के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल साढ़े ग्यारह बजे इनकी पत्नी रेशमा सीबर्न के घर रॉयल रोड बॉडीजामुगत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बोलेन मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। अली ब्रियन वाकवा में 63 साल के 63 years old श्री सुखबीर रामचंद जो स्वराज के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थे कल 11 बजे इनकी पत्नी मालिनी रामचंद के घर आली ब्रियन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली ब्रियन की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। NHDC ग्रांबेलिया में 52 साल के 52 years old श्री मोगानादेन किस्नासामी जो अजागेन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल साढ़े बारह बजे इनके घर NHDC ग्रांबेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिव्यादी ख्याल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio. Mana.

सुहाना सफर। चलिए जी, सुहाना सफर प्रोग्राम दिन के 1:10 हुए हैं और बस आपको ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम हो गया है, आराम से आपको अपना जो लंच है वो करना है और हमारे साथ जो गाने हैं वो इंजॉय करने हैं। वैसे तो हमारे टिकटॉक पे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लाइव को फॉलो करते हैं, जो हमारे गाने इंजॉय करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अपने दिल की बात कभी सुनाते हैं, कभी हम अपने दिल की बात करते हैं, कभी बहुत हंसते हैं, कभी बहुत हम लाइव की गहराई में चले जाते हैं। तो यहाँ पर सारे लोगों का स्वागत है। प्रियंशना साथ में, सुमहरा है हमारे साथ, उनके भाई उनके बहनों के लिए, वी हैव राज, रोशन मोहन, वी हैव सीताराम दोनी, अफीजा साइलेश के लिए गाना मांग रहे हैं, वहीं पे ऋषि हमारे साथ है। नमस्ते ऋषि, कैसे हो आप? सब बढ़िया, सब ठीक। चलो तो यहाँ पर अभी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वैसे ऋषि कहते हैं कि आज मैं ऑफ हूँ तो आराम से आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ, थैंक यू सो मच ब्रदर। चलिए इसी के साथ यहाँ पर शिवा कुमार हमारे साथ हैं और उनके लिए भी पेश करते हैं प्रोग्राम का हमारा ये अगला गाना। बस आप लोग ऐसे रिलैक्स कीजिए और गाना सुनिए। मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुमको अपने आप शायरी आ गई। और यहाँ पर वी हैव

रूबेन फ्रॉम क्वेबेक, थैंक यू सो मच. आपके यहाँ तो जब मॉर्निंग होती है, हमारे यहाँ रात होती है, राइट? मयूरी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में.

0: काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई है भाई, बस इतना कह दो कि प्यार हो गया है।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर, सुहाना

0: सफर में जो हम सफर बनने आए हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना साल साहब आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। भूषण दामरी, साधना, वैदेही, फिरोज, तेज सनातन एंड रूबेन कहते हैं कि इट्स 5 AM इन क्यूबेक। ओ माई गॉड, तो बहुत ज़्यादा अर्ली है, लेकिन अच्छा लगा जानकर कि इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अनिता पैतुक जी, आपके लिए गाना होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग नए गाने नहीं चलाते, बार बार नए गाने की फरमाइश आती है। रिवन हाय, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं आप एनजो। ओके, कहते हैं हाय सखी। हेलो जी, कैसे हो?
1: Radio.
0: अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। होता है कभी कभी कि कभी हम किसी से मिलते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इनको तो हम पहले से ही जानते हैं। विश्वनाथ प्रयाग जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।

0: चलिए जी, हमारे साथ है ऋषिका, संगीता सुखारी, बबीता नेमन, अंजू, रेशमा, प्रेमिला फ्रॉम पेरिस, हेलो किरण, कैसे हैं आप? निशा, आहा हा आहा हा, गुरु है पेरिस से, वही इंदिरा है त्रियोले से, और शैला वैतलिंगम का स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में। अब हमें सुन रहे हैं इस समय रेडियो मनोरंजन पर, हमारा टिकटॉक लाइव है, आप चाहे तो हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, वरना बाकी गीतों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं।
1: RM3 Radio.

अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं भाई, हम तो साथ में चलते हैं, इतने सारे हमारे जो लिसनर्स हमारे साथ जो हैं। चलिए ये नेक्स्ट गाना होगा आपके लिए चाची इंद्रिया।

से और यही गाना हम विमला लक्ष्मण आपके नाम डेडिकेट करते हैं अंजी आमुगम करिश्मा झागी एंड पूनम संभू विश्वानी जमन जी आपके लिए होगा ये प्यारा सा गाना स्वागत करते हैं आपका हम प्रोग्राम है सुहाना सफ़र

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए जी, सुहाना सफर प्रोग्राम है हमारा और यहाँ पर प्यार से कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो एक बार

0: फिर यहाँ पर हम सबका वेलकम करना चाहेंगे और यहाँ पे ऋषिका, संगीता सुखारी, बबीता निमन, अंजू, रेशमा, प्रेमिला, किरण, निशा और साथ में इंदिरा जी, शेला, नलिनी गुलाम, सुरेखा के लिए गाना होगा कर्सी के नाम, नदीम, प्रीतम, दीपक बिहारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में अनोखी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर कर्सी के हमसे कहते हैं कि भाई हमारा तो मन है रहने का लेकिन काम है इसीलिए जाना पड़ रहा है, लेकिन थैंक यू सो मच। वैसे भी हमारे पास कुछ 18 मिनट रह गए हैं प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि अब तक के जितने भी गाने हमने चलाए आपने जरूर पसंद किया होगा।
1: You're listening RM Free Radio, Radio, Radio.
0: कभी कभी होता है ना, हम दिल की बात कह नहीं पाते हैं, मौका मिले तो कह दीजिए, मन हल्का हो जाएगा और इस बात का कभी दुख भी नहीं होगा, कम से कम ये यकीन होगा बात हमने कही तो सही। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाला हाँ बोलेगा या ना बोलेगा।

0: RM3 Radio.
1: चलिए यहाँ पर मलेशिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज, उनका वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। आप कहाँ से सुन रहे हैं बताइएगा जरूर।

0: चलिए हम ऑलमोस्ट हमारे इस प्रोग्राम के आखिर तक पहुंच गए हैं. उम्मीद करती हूं कि अभी तक के जितने भी गाने हम आपके लिए लेकर आए आपने पसंद किया होगा. और इस गाने की भी फरमाइश आई थी, मुझे नहीं पता किसने की थी, लेकिन इस गाने की फरमाइश आई है. धर्म करम फम का ये गाना कोमल अश्विनी किरोदर और ललिता जी के नाम डेडिकेट करते हैं. माधुरी कहती हैं कि मेरे लिए, अरे माधुरी जी ये गाना आपके नाम. सब घर पे हैं, काम पर हैं, ऑफिस पे हैं, बाजार में हैं, सब्जी खरीद रहे हैं या सब्जी बना रहे हैं, साथ दीजिएगा.
1: एक दिन

बात तो सच्ची है कि हमारी जो बॉडी होती है वही तो रह जाती है, जो याद हम किसी के साथ बनाते हैं बस वही यादें रह जाती हैं। चलिए इसी के साथ यहाँ पर प्रेमा एंड साथ में हम गाना डेडिकेट करते हैं आपके लिए, धनुष बाबना जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजनी लता देव नमस्कार स्वागत है आपका। और यहाँ पर चलिए चलते चलते नेक्स्ट गाना हम परी के नाम भी डेडिकेट करना चाहेंगे, राजीव मुहावीर आपका स्वागत है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जाने का समय हो गया है। और चलते चलते यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना जो होगा स्टीवन आपके नाम डेडिकेट करते हैं, एंड स्पेशली इस गाने की फरमाइश की गई थी ये गाना हम ए जे के नाम डेडिकेट करेंगे और साथ में परी माधुरी मनीता जी और सबके लिए स्पेशली संजय और उनकी प्यारी सी सिस्टर अनीता के नाम। जिस समय हमें सुन रहे हैं कहते हैं कि लंच हो रहा था हमारा, आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो चलिए जितने भी भाई बहने हमारे साथ जुड़े हुए उन सब

के लिए स्पेशली ये गाना डेडिकेट करते हैं। और इसी के साथ हमारे जाने का टाइम हो गया है, तो आपसे मुलाकात करूंगी अब मैं फ्राइडे को। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर। बस ये गाना साहिल के लिए और उनकी भाभी के नाम परी, मनीता, माधुरी जी, सबके नाम।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। पुराने वित्त मंत्री रंगानाथन पर्याची और पूर्व श्रम मंत्री सुरेश कालीचरण ने कल रात पुलिस हिरासत में बताई आज दोनों करप्शन के अस्थायी इल्जाम के तहत पोटली की इंटरमीडिएट अदालत में पेश हो रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के दौरान मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की मुर्शिद शाखा की निदेशिका करीना निक्जिस के फोन से प्राप्त कुछ जानकारियों के आधार पर इन दो पूर्व मंत्रियों से पूछताछ की जा रही है। पेट्रोली पैदावारों की खरीद के लिए 30 बिलियन रुपए के ठेके के संदर्भ में रंगानाथन पर्याची और सुरेश कालीचरण पर मुकदमा चल रहा है। 16 जून की तारीख दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतीकात्मक है। कल युवा दिवस मनाया गया जो 1976 में सोवियतों की घटना की याद में है। हजारों की तादाद में छात्रों ने उस वक्त भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। आज 50 साल बाद मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका के सफारत ने ओरम गॉर्डन थियानो में एक औपचारिक रिसेप्शन का आयोजन किया। मौके पर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम खास मेहमान थे। कूटनीतिक दल के मेम्बरानों ने भी हिस्सा लिया। आज मुसलमान कौम के लिए नए साल का आगाज हुआ है। ये 1448 हिजरी है। मुहर्रम महीना एक मुकद्दस माह माना जाता है। सबसे अजीम वाकया करबला का है जब हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने दीन और हक के लिए अपनी जान दी थी। इस महीने की 10वीं तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है जिसे यौम अशूरा कहा जाता है। मुसलमान कौम को नए इस्लामी साल की बधाई। G7 शिखर

0: सम्मेलन में सभी नेता वचनबद्ध रहे हैं कि रूस की अर्थनीति पर दबाव बढ़ाना चाहिए, नए संकल्प का समर्थन करने और इसे तेजी से अमल में लाने के लिए हवाई प्रतिरक्षा ताकतों के अलावा इंटरसेप्टर्स को फराहम किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि वो गैस और तेल के क्षेत्रों में रूस पर अपनी पाबंदियां और ठोस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM3 Radio, Radio, Radio.
3: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से आवा भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
4: नमस्ते, धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में हम अरविंद आप सब लोग के स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम आप जनबे करे ला हर बुधवार के हमें लेके आयला जा और ये कार्यक्रम की तैयारी में हमने के सहयोगी संजू तोकोकी साथ दवत हुआ ना। आज हमने तनकुन लयिका लोग के चर्चा करत जा, जो पुस्तक बनावल गलबा आपके हमने कैला बोले जा भोजपुरी टीचर्स हैंडबुक स्टैंडर्ड वन, ई महात्मा गांधी संस्थान में बनल और एकर उद्देश्य है लयिका लोग के भोजपुरी सुनाए के, एगो चीज है सिखाए के और सुनाए के। सुनाए के माने जब एगो भाषा सुनब जा तो वो भाषा हम यू सकब जा बाद में बतियाए। अब हम ये देखा संजुओ भोजपुरी बतियाला, हमू भोजपुरी बतियाला, आप भी भोजपुरी बतियाला, देखला हम जैसे बोलने हम तो गड़बड़ कर देनी। हम के चाहन बोले के संजू भोजपुरी बतियाला, हम भी भोजपुरी बतियाला, आप भी भोजपुरी बतियाल, देखला जे पर एगो भोजपुरी सीख लेनी जा। तो ई सब लयिका लोग के जब ई सब शब्द आप सुनेब तो लोग भी गति गति ई सब एक दू शब्द लगे जा बोली। शुरुआत करी जाए एगो एगो एगो क्रियाकलाप से, एगो चला बगीचा घूमे, आज मिलके तनकुन बगीचा घूमब जा। तेकर में ऐसन बा आव रोशन शीला आव, एकर आव पर हिजा ध्यान देवल गे बा, आव माने टू कम, आव रोशन शीला आव फुलवारी में सब कोई आव, सब कोई आव हजा सब कोई पर बल देवत हिजा, सब कोई माने एवरीवन। आव रोशन शीला आव फुलवारी में सब कोई आव, एगो लाल फूल खिलल बा, दूगो गेंदा खूबे सुंदर बा, तहजा खूबे शब्द देखला खूबे सुंदर बा माने बहुत सुंदर बा, दूगो गेंदा एगो दूगो इधी भोजपुरी हा एक दो, त एगो लाल फूल खिलल बा, दूगो गेंदा खूबे सुंदर बा, आव अरविंद आव सिया बगीचा में सब कोई आव, सब कोई आव, आम के गांछी भोजपुरी में पेड़ के बोले जा गांछी, आम के गांछी खूबे भरल बा, भरल बा खूबे भरल बा, एगो दूसर का शब्द बोले जा गांछी लधराल बा, आम से लधराल बा खूबे भरल बा, तूर ल भैया आम तूरे के टुप्लक, तूर ल भैया तीन गो आम, त एगो बोलंजा एगो फूल दुगो गेंदा हजा परी तीन गो आम, तूर ल भैया तीन गो आम ले ल दीदी चार गो आम हजा परी चार गो, मिल के खाब जा पक्कल आम, मिल के एक साथ मिल के खाब जा कैसन आम पक्कल आम। तेकर में भाई एगो छोटा सुन कविता बा पर एकर में भोजपुरी के छोटा छोटा मोटा चीज बहुत कुछ सीख लो अब जा, एकरा फिर से ले जा। आव रोशन शीला आव फुलवारी में सब कोई आव, एगो लाल फूल खिलल बा, दू गो गेंदा खूबे सुंदर बा, आव अरविंद आव सिया बगीचा में सब कोई आव, आम के घाची खूबे भरल बा, तूर ल भैया तीन गो आम ले ल दीदी चार गो आम, मिल के खाब जा पक्कल आम। ते एगो छोटा सुन कविता जोन लयिका लोग के सकब जा सुनाई, जितना कोई हमी के सुना

0: हुआ जायजा परी तो लोग अपन लड़का लोग के भोजपुरी खोज सिखाए के या फिर बैठका में पढ़ावल जला तो हम से संपर्क करिए ई कविता जुन माह हम सब जा तो लोग लगे आने का है नहीं तो लोग अपन लड़का लोग के ई क्रियाकलाप चल बगीचा घूमे सब बजा सुनाए धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में आज एगो लड़का लोग के कविता संग शुरू कर लीजिए आगे बढ़ी जा वो गीत सुनब जा फिर और अच्छी दिखे आप जा
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ थे जा धरोहर के सरोवर कार्यक्रम अभी संजोंग के बोलत हल जब छोटा रहल त ढेर खेल खेलत हल और वो सब खेल में कैसन खेल रहल धला कानिर गुल्ली डंडा और उक्का बुक्का तीन गोलू का हाँ ई ढेर लेका लो खेल ले वंजा ये गोइसन खेल जो ढेर कोई रही तब सब बता खेले घेरा बना के खेल खेलत लंजा त आज हमी के लैका लोग को ये सब खेल कहाँ सिखाए ले जा और वो ले जाके देखा लैका लोग खाली लैपटॉप लेके मोबाइल लेके बैठल हो जा टीवी के सामने बैठल हो जा त ओकरो मौका द लैका लोग के सामूहिक खेल में भाग लेके स्कूल में बैठका में घर में तो लैका नहीं हुई पड़ोसी के लैका

लोग के बोले बत सके ला समस्या हो जाए त स्कूल में बैठका में लेका लोग के सब इस सब गीत सिखाए उका बुका तीन गुले का कर वीडियो भी बा यूट्यूब में बना के हमने के सहयोगी विवेक बिंदा दल्ले होवन तई कर पर को गीत भी बनल बा आवा सुनला

0: मरीज के इलाज करी, ई त डॉक्टर बनी, ई हवाई जहाज चलाई, ई त पायलट बनी, ई कविता लिखी, ई त कवि बनी, ई सब्जी रोपी, ई त खेतीहर बनी।
1: ताकी ताकी पूरिया जी मैं चबोरिया, हम खाई भौजी।

तेई जोन गीत बा चन्ना मामा दूर के ई भोजपुरी के जोन पुस्तक बनावल गल रहल अभिले बा ग्रेड वन के ओकर पहल का पाठ है गीत चन्ना मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के तू खैब थाली में हमरा देब प्याली में प्याली गल टूट मामा गैलन रूट प्याली लेलन और मामा ऐलन दौर एगो लोरी भी ऐसन चन्ना मामा के रे चन्दा मामा आ रे

0: आव पारे आव नदिया किनारे आव सोने के कतुरिया में दूध भात ले ले आव बबुआ के मुआ में घुटूक सो जा बाबू सो जा सो जा बाबू सो जा। अभी संजू के अपन बचपन याद चलाल हमरो हमी के दादी लोग हमी के ये सब सुना सुना के बबुआ के मुआ में घुटूक जब लेका लो के खाए के बुलबा पिए के बुलबा तो ऐसे प्यार से गीत गा के भोजपुरी गीत में जो मिठास रहलो सब लेके अभी तक जब सुनब खैले किस बोलब एगो संस्कृति के एगो परिवर्तन है लेकुआ के खयो के मन रही नहीं खाई अब निमन से बोलब निमन से गीत गा के तब लेकुआ सकी निमन से जाने इसने हमने लड़का लोग के छोटा मोटा किस्सा सुनाओ था निजा तो सोचा था एगो किस्सा भी आपके सुना दे जा भी सुना
1: RM3 Radio.

0: ए रवि बेटा ई का करल हियाव। रवि बेटा अपन घर आना आसपास चाहे सफा रखे के आव तुहराई पर एगो किस्सा सुना।
1: किस्सा सुनब किस्सा सुनब दादी से हम किस्सा सुनब किस्सा सुनब।
0: एगो तालाब रहल, तालाब के पानी हरदम सफा रहे। तालाब के मछली आपस में मिलते रहे। कुआ जनावर चिड़ै और जल जंतु आपस में मिलकर रहलन सा। उ तालाब के पानी सब कोई पिए, कुआ सब कोई हंसी खुशी से जिए। एगो बगुला कबो कबो उ तालाब में पानी पिए आवे। एक दिन बगुला पानी पिए आल, बाकी तालाब के पानी मैला रहल। वो पानी नहीं पिलक, छोटा छोटा मच्छी मरल रहल, मक्खी भिनभिनात रहल, कचरा उपलाल रहल, कमल के फूल भी मुरझाल रहल। सब देख के बगुला उदास भई। तब एगो बड़ा मच्छी ओकर से विनती करला।
2: ए मित्र, हमनी दुखी है जा।
3: ई का होल, तालाब कैसे मैला भई?
2: का बोलब, कुछ दिन से एक जना ई तालाब में कचरा फेंकत बा।
3: ई बहुत दुख के बात बा, हमनी सब के जान खतरा में बा।
2: ए मिंतर, तू ही हमनी के जान सबा बचाए।
3: हम कैसे सब जान बचाए?
2: तू जा इस संदेश राजा तक पहुंचा दे।
0: ई खबर राजा तक पहुंचाए।

तालाब के चारों बगल लक्सा लगवा देलक। वो आदमी जैसे कचरा फेंक के बैठल हो गए सट गए।

0: 뜨겁기로 일하.
1: 아냐. 아냐. 어머나 마음 걸다, 아냐. 어머나 마음 걸다. 어머나 일하사 쓰니 갈다. 어머나 일하사 쓰니 갈다. 니 갈다.
2: दुष्ट, तोरा जरूर सजा मिली। तू तालाब के जल्दी सफा कर, जब तक तू इ गांव में जीवा, इ तालाब के हमेशा सफा रखिया। कान खोल के सुन ल, इ तालाब हमेशा चाहिए सफा रखे। महिला रही तो तोरा कड़ा से कड़ा सजा मिली।
1: हाँ राजा, हाँ ई तालाब के सफा रखब, जब मैला नहीं फेंकब नहीं फेंकब। हाँ राजा, हम अपन कान पकड़ब है, हम हरदम ई तालाब के सफा रखब सफा रखब।
3: रवि बेटा, इही खातिर बोलल जाला हमेशा चाहिए अच्छा काम करे के, काहे के जैसा

0: बहुत सुंदर बा, एके हमेशा सफा रखिया।
1: RM3 रेडियो।
2: जैसन करनी वैसन भरनी, ई जो कहानी है एकरा हला ई धला भोजपुरी के पहल का 3D थ्री डायमेंशन के बनावल गल कार्टून रहल। ई लैका लोग खातिर बनावल गल रहल। आज भी बा देखे के मन हुई तो एक दिन आइए महात्मा गांधी संस्थान तो लोग के दिखा जब और सगबजा अपन लैका लोग के भी दिखाए। धला इस सब भोजपुरी लोक कथा लोक किस्सा के माध्यम से लैका लोग के एगो सबक सिखाए के एगो सीख दे के कि जैसन करबा ओसन भरबा और ई में पर्यावरण के सुरक्षित रखे के भी जो ना बात बोला गलबा ई भी उल्लेखनीय बा। चलो कार्यक्रम के आगे बढ़ाब जा। आज हमनी एगो धला भोजपुरी के तन कुछ शब्द लिप जा जेकर दुगो अर्थ है। दुगो अर्थ एक नानार्थक शब्द होमोनिम्स। एगो शब्द बा अंडा उठाई। संजू बोला अंडा उठाई के अर्थ कुछ है? मुर्गी अंडा पर ले बा उ गैला उठाई नहीं धला वो लोग अंडा उठाई गल होन सा अंडा उठाना धला अंडा उठाई माने उठाना। पर एक दूसर अर्थ है मुर्गी अंडा पर बैठ के उठाई। मुर्गी अंडा पर बैठ के उठाई यानी चूजा होई। धला वो बैठी तब न अंडा उठाई समझे ना। तेरे दूसर का अर्थ है अगोरे की। अगोरे कुछ बोला अगोरे की कब कहूं पर मर्दी हो रहेला रात जगाई नहीं होला रात जगाई तब उकरा बन जा मुर्दा अगोरे के। एकर दूसर का अर्थ भी है इंतजार करे के। वो कब अभी ले पगार लापे नहीं मिलल बा अपन लापे अगोरे का इंतजार करता। आंख मरलक कुछ यही हाँ जैसे आंख मरलक संजुवता धला छोकरी के छेरे के हो गीतवा ना आंख मारे।

0: लड़की आंख मारे हाँ वो वो अर्थ है पर आंख मरलक कर एगो अर्थ संकेत करके हाँ उधर एगो इशारा करलक संकेत करलक और वो आंख मरलक मटकी मरलक यही मटकी मरलक ये कर कचकच कचकच जहां बहुत ही कीचर कीचर से कचकच हो गलबा पर एक औरों को अर्थ बा सिझल नहीं बा कचकच बा अरुई अरुई या फिर मान्योग जब दलबा उबले के तो जब नहीं सिझले सिझले तो तुम कचकच हो जाला दिखला योग और अर्थ कल्पी कल्पी रोटी अन फेंकल बा कल्पी एगो अर्थ हम हव औरतिया अपन दुख कल्पता कल्पता यानी बोलता हव कोई अपन अपन दुख कल्पता आरोग ले लजा किरिन किरिन उगल फजीरे किरिन उगल घाम उगल आरोग अर्थ है किरिन धरलक माने सरदर्द क्रियोली में एक शब्द है बोले जा जब कपार के एक कोना में दुखाला कुछ बोले जाओ नहीं एगो एक दिन दुखाला था सोचे था एगो शब्द है करेगो मिग्रेन मिग्रेन तो है किरिन मिग्रेन लोग शब्द लगभग बराबर बा आलू औरों को शब्द ले ले जा कुदेला कुदेला वो बहुत कूदता मानी धधाता धधाता बहुत कूदता और उकर औरों को अर्थ उछलना कूदे के उछल कूद करे के औरों को वाक्य बा कोई पूछत नहीं बा कोई पूछत नहीं बा कब बाजार में जेबा बोलबा कोई पूछत नहीं बा माने कोई चीज हाउ जन सामान हुआ बा कोई दिखत नहीं बा बहुत सस्ता बा या फिर बहुत महंगा बा कोई पूछत नहीं बा ओकरा गंती नहीं लबत वंजा कोई पूछत नहीं बा एकर औरू को अर्थ बात नहीं करता ओकरा कोई नहीं पूछत बा कोई ओकर ओकर हालचाल नहीं पूछत है ठीक बा एगो अंतिम ले लजा खोद खोद की खोद खोद की खोद के माने कोड़ कोड़ के थला खोद खोद के वो कुछ बोलन जा बतात खोदता खोद खोद की एक अरगो दूसर अर्थ है खुदिया खुदिया के जानकारी लेके खुदिया के चेफ मास्यू हाँ खुदिया खुदिया के जानकारी लेके थला एक कैसे है इतना पूछबा उधर से उतना पूछबा कसु में तो ऐसे नहीं रहल हाँ तो तब कुछ होल हाँ हाँ अच्छा तो ऐसे ना हाँ तब धलक कुनो जानकारी ले खुजत हो जा तो ये एक दुगो शब्द रहल जेकर अर्थ लगभग बराबर बा चलो एगो गीत सुनने जा फिर कार्यक्रम के आगे बढ़ाब जा
1: RM3 Radio

0: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से। तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
1: हम जैसे जाए स्टूडियो में नी, हम सोची संजोमा से बोली कि आज कौन सी कार्यक्रम में कौन सी आनंद जा। पहला चीज कौन सी पूछ लग, ये फुटबॉल वन देखा तुए? जैसे हमार हमार हमार कपार धर लगो गो बुल है, लोगे खाली फुटबॉल लाओ केला कपरवा में। कोनो बात नहीं बा, कोनो बात ना। पर नहीं, ये चाहेला जाने के देखा, भोजपुरी को बहुत ही ऐसा भाषा है जो धला सगरो है। भोजपुरी के शब्द वो मेडिकल के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में है, गीत संगीत के क्षेत्र में है, आम जनता के बोल चाल के भाषा है। और वो कहे नहीं जे आम जनता के बोल चाल के भाषा रही तो कहे नहीं ये गो एगो ऐसा भाषा बनी जोन जिसके बारे में भोजपुरी पर भी सकब चर्चा करी। देखा हमने तो जन्मे करे रेडियो में कार्यक्रम लेके आये जा खेल कूद के लेके, तेकर में ऐसा ढेर शब्द आवेला जो न भोजपुरी में उकर जो रिपोर्टाज होला। एमबीसी टीवी के तीसर का चैनल पर जो अभी समाचार आवत बा, अभी से तीन बजे सुनिया उकर में भोजपुरी पर एगो भोजपुरी भाषा पर एगो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स

पर एगो रिपोर्ट भोजपुरी भाषा में हमको याद बा जब क्रिकेट वर्ल्ड कप रहल तब हो दिन उ बखत भोजपुरी पर भी क्रिकेट के कमेंट्री चलत रहल और एकर में बहुत अच्छा लगत रहे सुने के। हम सुनते नहीं दिन तो लोग के सुनाती है गो पर कहीं पता नहीं कहाँ रख दिले सर एक खोजब कहूँ ना कहूँ खोजब उकरा। तब बात ई बाकी जैसे एगो शब्द लेवब जाकि धला है टीमुआ हो टीमुआ के पानी पानी कर दिलक तो पानी पानी कर दिलक एगो एगो मुहावरा में तीन माने धलक इसे लिबा भी जिसे दिमास के हो जो न जर्मनी के टीम बाकुआसाओ के 7-1 से हरेलक तब भोजपुरी में सकब जा बोले ओकरा 7-1 से पछरलक 7-1 से ओकरा लसरलक ओकरा पानी पानी करते लग। तो देखे इस शब्द में जोन जोन असर बा जोन प्रभाव बा वो सकेला दूसर शब्द में नहीं मिली दूसर भाषा में नहीं मिली। अब कैसे जब बोल रहा ओकरा कुदा कुदा के मरलक थला बेरहमी से मरलक ओकरा कुदा कुदा के। और वो शब्द जैसे बोल रहा एगो धला एगो टीम जब आखिरी मिनट में वो गोल स्कोर करेला आखिरी मिनट में वो गोल स्कोर करेला हाउ तो दूसर टीम के गोल स्कोर करे के मौका नहीं मिलेला तो एक जे भोजपुरी में बोलबा तो सकब्जा बोले कि वो टीम के पीठी पर ऐसा छुरा घोंसलक कि ओकरा फरफराए के मौका नहीं मिलल ओकरा फरफराए के मौका नहीं मिलल। तो ऐसा ढेर शब्द है अभी कोनो दिन तो लोग के एगो किस बोला जाओ करा एगो एआई जोन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कैसे बना देवेला एगो रिपोर्ट देबा ओकरा अंग्रेजी में तो हिंदी में तो भोजपुरी में बना देवेला एगो अभी कोशिश कर रहा था। देखा अभी हमने एआई के माध्यम से भोजपुरी एआई में भी चला बा कहे नहीं चला अभी एगो कोशिश कर रहा जा एआई से हम पूछब जा इन भोजपुरी में हाउ कैन वी एक्सप्लेन द डिफीट ऑफ मान ल पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया इन क्रिकेट। एक हम भोजपुरी में बोलनी बोली कहके देखिए तो कहा बोली एआई महाराज की जय हो। देखा बोले बा भारत के हाथे पाकिस्तान के हार के कई तरीका से समझावल जा सकेला चाहे ओकरा पर चुटकी लिहल जा सकेला मैच के रोमांच और पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बयां करे खातिर अलग अलग तरीका बा। अब जैसे हिजा पर एगो क्लासिक रूप में दिल बा एकदम ठेठ और करक अंदाज में तो बोली पाकिस्तान भारत के आगे पाकिस्तान टिक ही नहीं पावल नेस्कल टिकी पाकिस्तान कुडंट इवन स्टैंड ए चांस अगेंस्ट इंडिया। अब हिजा पर टीम इंडिया ऐसन धुलाई कर लग पाकिस्तान के पानी मांगे के मौका नहीं मिलल ऐसा ढेर बा। इसने मैं धलक फुटबॉल में लिबर मान हम पूछा भोजपुरी में इन भोजपुरी व्हेन लिवरपूल बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड 7-0 कैसे बोली हमें कि एआई महाराज ऐसे बोले बा तारीख भी दे दिलक 5 मार्च 2023 के भयल उ ऐतिहासिक मैच जब अनफील्ड के मैदान पर लिवरपूल फुटबॉल टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड के 7-0 से हरा के इतिहास रच दिले रहे तो ई रो और लोकल स्टाइल में कैसे बोला जा कि लिवरपूल के टीम ऐसन धुलाई कर लन जा
मैनचेस्टर यूनाइटेड के

जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सातों जन्म याद रही, तो सात को गोल खेलक तो सातों जन्म याद रही नहीं, तो देखा भोजपुरी में कैसे बोल दिलक। संजू संजू खिसाता उनका टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड, नहीं दिखला कोनो बात नहीं, अबरी हला एगो मैनचेस्टर पर ले जा। खजा पर देखा उनका ससुर, तोहर ससुर की खुशी का दिला जा। आज सात गोल मार के लिवरपूल मैनचेस्टर के हेंकड़ी एकदम पिछुए पर झाड़ दिलक। ई मैच ना रहे भाई, ई तो सरेआम बेइज्जती रही। सातों गोल ऐसा लगल जैसे करेजा पर लात। कहा नहीं बा भोजपुरी, सगरो बा भोजपुरी। ऐसा भोजपुरी के जो शब्द बा कितना सुंदर बना देवेला ई बात की। नहीं संजू चल गीत सुना दे।

0: RM3 Radio. Radio.
1: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से, तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे

यही संगे हमने के कार्यक्रम के समाप्त करत है जा धरोहर के सरोवर कार्यक्रम जो ना आप जाने ला MBC और महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी लोक संस्कृति विभाग के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत करी ला जा एगो नवा कार्यक्रम लेके आव जा फिर से तब ले हमने के सहयोगी संजू के धन्यवाद देव जा और साथ ही साथ आप लोग जितना कुछ बोलनी चाह इस कार्यक्रम में जरूर एक और पर ध्यान दिया और जस्ती जानकारी खुजब इस सब पर हम के संपर्क करिया महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी लोक संस्कृति विभाग में। नमस्ते।

0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: Time check, exactly 3 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
3: नमस्कार और आदाब. अदालती कार्रवाई की ये खबर इस खबर से शुरू करते हैं. मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल की स्थानीय शाखा की निदेशिका करीना निजस और पूर्व मंत्री रंगनादेन पडियाची और सुरेश कालीचरण के बीच फोन पर हुई बातचीत के दौरान ईंधन की खरीद को लेकर ठेका प्रदान करने की बात हुई थी, जबकि मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल बिडिंग एक्सरसाइज में नहीं था. ये बात एफसीसी के प्रतिनिधि ने आज सुबह पोटलवी अदालत में कही, जबकि उन्होंने ये कहा कि पूर्व मंत्री रंगनादेन पडियाची और सुरेश कालीचरण को यानी उन्हें इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि डिजिटल सबूत मिले थे और आज दोनों पोटली अदालत में पेश हुए. उन पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन का अस्थाई आरोप दर्ज किया गया है. आज शर्त पर उन्हें रिहा किया गया. दोनों को 4 लाख रुपए की 2 जमानतें भरनी पड़ी हैं और कुछ सख्त शर्तें लगाई गई हैं. उन्हें किसी भी तरह करीना निजस और राजीव सरवान सिंह के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बात नहीं करनी होगी. आपको बता दें कि कई समर्थक अदालत में मौजूद थे. और ये चर्चा यानी मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम इंटरनेशनल की बात करीब 3 सालों से चल रही है. स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने ईंधन की सप्लाई को लेकर मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को $691 मिलियन बेशक अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा रुपए का ठेका प्रदान किया था. 16 जून की तारीख दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतीकात्मक. कल युवा दिवस मनाया गया. 1976 में सोवियतों की घटना की याद में हजारों की तादाद में छात्रों ने उस वक्त भेदभाव के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी और मुशरस में दक्षिण अफ्रीका की सफारत ने ओरम गॉर्डन थ्रियानो में एक औपचारिक रिसेप्शन का आयोजन किया. मौके पर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम खास मेहमान रहे. कूटनीतिक दल के मेम्बरानों की भी हाजिरी रही है. G7 शिखर सम्मेलन में सभी नेता वचनबद्ध रहे हैं कि रूस की अर्थनीति पर दबाव बढ़ाना चाहिए, नए संकल्प का समर्थन करने और इसे तेजी से अमल में लाने के लिए हवाई प्रतिरक्षा ताकतों के अलावा इंटरसेप्टर्स को फराहम किया जाएगा. नेताओं

0: ने कहा कि वो गैस और तेल के क्षेत्रों में रूस पर अपनी पाबंदियां और ठोस करेंगे। फुटबॉल में एक बार फिर फैंस ने मैदान के शेर लियोनेल मेसी का कमाल देखा। उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप हैट्रिक कायम कर दिया अपने 16वें गोल करके। मेसी ने साबित कर दिया कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने अल्जीरिया के मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए 3 गोल कर दिए। फुटबॉल परस्तारों के लिए ये मैच काफी यादगार रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का और एमबीसी 3 पर यानी एमबीसी 3 पर साथ ही साथ फेसबुक पेज पर फॉलो करने वाले हमारे सभी दर्शकों का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। बुधवार का दिन है 17 जून आज की तारीख और इस एक घंटे के सफर में हम जुड़े हैं आपका साथ देने के लिए। मैं हूं रत्ना, सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। और अभी से लेकर बिल्कुल आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो बस 21 जून को मनाया जाएगा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और योग आज के समय में बहुत ही आवश्यक बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे सेहत को लेकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जहां योग एक ऐसी पद्धति जो कई वर्षों से, ये हम कह सकते हैं कि भारतीय पद्धति, भारतीय प्राचीन पद्धति है जो आज भी लोग अपनाते हैं। और इसी के साथ अपने आप को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए, इस पर बहुत सारी चर्चाएं आए दिन हम करते रहते हैं। और आजकल देखा गया है कि कई सारे संस्थाओं में योग भाई उसके जो कार्यशालाएं हैं लगाई जाती है, जिससे कि हम अवगत करा सके लोगों को कि किस प्रकार से हम अपनी जीवन शैली को एक ऐसी प्राचीन पद्धति में ढाल सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। आपको बताते चले, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में टीचर ऑफ इंडियन कल्चर एंड योगा पर मिस तानिया गुप्ता यहाँ पर मॉरिशस आई हुई हैं और कई महीनों से वे यहाँ पर हैं। तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इन्हें आज के इस मंच पर उनको हम आमंत्रित कर सके। आइए उनका स्वागत करते हैं। तानिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, नमस्ते एवरीवन।
1: और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल योग पर हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाएगा इस पर। तो पहले तो मेरा यही सवाल होगा कि योग का अर्थ क्या है, यानी सिर्फ योगासन करना ही योग कहलाया जा सकता है?
2: नहीं, तो इसकी स्टार्टिंग, मैं इसकी शुरुआत भगवद गीता के एक श्लोक से करना चाहूँगी जो हमारे चैप्टर नंबर 2 में है
1: जी,
2: जिसमें कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणी संग त्यक्त्व धनंजया सिद्ध असिद्ध समभूतवा समत्वम योग उच्यते। जिसका अर्थ है कि जीवन को एक समन्वय बैलेंस्ड में जीना ही योग है। सिर्फ आसन ही योग नहीं है, योग का मतलब है, अर्थ है जुड़ना, अपने शरीर को, मन को, आत्मा को, तीनों को एक साथ जुड़ना। जैसे हम कहते हैं माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, उसी तरीके से आसन से कहीं ऊपर है योग। अगर एक सिंगल शब्द में उसका मतलब बताया जाए तो यूनियन, जुड़ना इज योग।
1: बिल्कुल, जैसे योग का ऑपोजिट होता है वियोग, और ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि योग का मतलब है
2: एग्जैक्टली संयोग होना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं तो हमारे श्रोताओं को हम जरूर बताना चाहेंगे कि ये दिवस क्यों मनाने जाने वाले, मतलब ये क्यों शुरुआत क्यों की गई इसकी, और ये कब से इसकी शुरुआत हुई है?
2: इसकी शुरुआत जागरूकता फैलाने के लिए ही हुई है। योग आज से नहीं है, 5000 साल पहले से योगी योग करते आए हैं
1: जी।
2: लेकिन इसको मैनकाइंड को देने के लिए कि हर साधारण व्यक्ति अपने जीवन में योग कर पाए, सब कर पाए, इसीलिए योग की शुरुआत हुई। इसीलिए स्पेशली एक

0: दिन बनाया गया 21 जून जिसे हम लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर भी बोलते हैं, उस वजह से 21 जून को चूज़ किया गया। और इसका सबसे पहला योग दिवस 21 जून 2015 से शुरू हुआ था, तो ये 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योग।
1: बिल्कुल, और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी इस साल का थीम क्या है।
0: इस साल का थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। तो क्यों हेल्दी एजिंग? क्योंकि हमें लगता है योग सब नहीं कर सकते, तो उस के ऑब्वियसली उम्र एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ती है, तो बढ़ती उम्र के साथ हमें प्रिवेंशन चाहिए होता है, तो हम खुद को बीमारियों से बचा पाएँ और सिर्फ बीमारियां ही नहीं जीवन में संतुलन ला पाएँ। इसीलिए इस बार का ये थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, के जो लोग की जो उम्र बढ़ रही है वो हेल्दी तरीके से बढ़े।
1: मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप बीमार पड़े तब योग शुरू करें,
0: जिससे
1: पहले से आप शुरू करें ताकि फिर आप कभी बीमार ना पड़े। बिल्कुल, तो हमें मन में ये याद रखना है कि हेल्दी लिविंग के लिए, यानी बस आजीवन आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसीलिए योग करना आज ही से शुरू करें। और बिल्कुल स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, योग इसे कैसे हासिल करने में हमारी सहायता कर सकता है?
0: तो अगर हम आसन से शुरू करें तो वो आपके शरीर को मजबूत बनाता है, लचीला बनाता है। फिर अगर हम प्राणायाम और ध्यान की तरफ जाएं तो वो आपको संतुलन में रखने के लिए हेल्प करता है, एक बैलेंस्ड जीवन के लिए। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, वो शांत रहता है, तो आप स्ट्रेस की तरफ कम जाते हैं। तो इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं, तो आपके खुशहाल जीवन के लिए हम कह सकते हैं कि योग बहुत ज़रूरी है।
1: और जैसे हम आजकल कहा गया है कि जीवन आधुनिकता की ओर बढ़ता जा रहा है, हम मॉडर्न बनते जा रहे हैं और मॉडर्न जीवन के साथ भाग दौड़, तो मतलब सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, जब तक आप रात को ना सोएं तब तक भाग दौड़ लगी रहती है। तो ऐसे भाग दौड़ भरे जीवन में योग क्यों आवश्यक है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि लोगों को ऐसा लगता है कि बीमार पड़ेंगे तब योगा शुरू करेंगे, पर आज के आधुनिक जीवन में हमें योग करना क्यों आवश्यक है?
0: तो अगर आप आजकल देखेंगे तो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है।
1: बिल्कुल,
0: मतलब स्पेशली कोविड के बाद हम स्क्रीन टाइम, हमारा बिजी लाइफस्टाइल के हम सिर्फ भाग दौड़ कर रहे हैं। हम सुबह उठते हैं भागने के लिए, हम वापस आते हैं अगले दिन भागने के लिए, राइट? तो जो स्क्रीन टाइम, जो बिजी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो बढ़ा है, उससे क्या है, लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बीमार हो तभी योग करें, पर क्योंकि आजकल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हमें बीमारियां पहले हो रही हैं, तो इसीलिए हम योग को एक योग एक अलीट साइंस है, एक अल्टरनेट थेरेपी है, कि अगर आपको दवाइयों से भी बचना है तो आप योग करिए, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा हमें अलग अलग तरीक़ों से हेल्प करता है। और इसमें हमारे पास योग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी करेगी। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल हैं तो आप चेयर योग करिए, उसी टाइम पे चेयर ब्रेक लीजिए 5 मिनट का, हर 15 मिनट में 5-5 मिनट का ब्रेक लेके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और मैं समझती हूँ जैसे आप बता रहे हो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और ये एक मोड ऑफ लाइफ बन चुका है, मतलब इससे हम निकल नहीं पाएंगे और ये बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे आप बता रहे हो एक ज़माना था जब योग करना, मतलब हम देखते थे कि लोग खड़े रहकर योग करते थे, और आजकल देखा गया है मोड ऑफ लिविंग के अनुसार योग की पद्धतियों में भी बदलाव आया है। तो जैसे तानिया जी बता रही हैं कि चेयर योगा भी, और मैंने देखा है कई सारे लोग चेयर सूर्य नमस्कार, यानी बैठे बैठे आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि भाई घुटने नहीं मुड़ते, कमर में मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर ये भी संभव है अगर आप करना चाहें तो। और डेफिनेटली जो लोग सच में जीवन हेल्दी तरीके से बिताना चाहते हैं तो एक कदम तो उठाना पड़ेगा। चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में आज की चर्चा कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर।

0: की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और आज हमारे साथ मिस तानिया गुप्ता जो भारत से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और फिलहाल के लिए इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में वे अपने क्लासेस देती हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और बिल्कुल जब हम भाग दौड़ की बात करते हैं और योग की बात करते हैं, लोगों को लगता है योग करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई योग में हमें सिर्फ आँखें बंद करके घंटों तक आंखें बंद करके मेडिटेशन करना है या फिर सर के बल खड़े हो जाना है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। योग हर कोई कर सकता है। और यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी तानिया जी से कि रोज़ योग करने से हमारे किन किन अंगों को, किन किन शरीर के भागों को हमें फ़ायदा पहुँच सकता है?
1: तो योग करने से कोई एक स्पेसिफिक अंग पे नहीं, पूरे शरीर पे काम करता है योग, क्योंकि हम रूट कॉज से काम करते हैं। तो हार्ट, लंग्स, लीवर, आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, पूरे पे काम करता है। बस इतना फ़र्क होता है कि कुछ कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम

0: कि इस व्यक्ति को करनी है या नहीं करनी, कि उनको क्या
1: कोई लिमिटेशंस
0: exactly,
1: होती है
0: तो. क्या उनके लिमिटेशंस हैं. तो योग का ना कोई ड्रॉबैक नहीं है. हम हमेशा योग में कहते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं पर कोई डिसएडवांटेज नहीं है. बेनिफिट्स तो हैं ही, वो तो बाय बेनिफिट हैं, लेकिन कोई भी हमारा ऐसे डिसएडवांटेज नहीं है. तो योग करने से आपके पूरे शरीर पर असर पड़ता है, कोई एक स्पेसिफिक अंग है ही नहीं. क्योंकि अगर

0: खड़ी हूँ मान लीजिए, और मैंने सिर्फ हाथ भी खींचे ऊपर की तरफ, तो हमारी मसल स्ट्रेच हुई, उसी के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ा, तो मेरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मेरा मस्कुलर स्केलेटल दोनों ने काम किया, और क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, शरीर को अच्छा लगा, तो ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम को बेटर हुआ। तो कोई एक
1: इंटरकनेक्टेड है। और जैसे आजकल तो मतलब देखा गया है आम जनता को, बहुत सारे लोगों में से एक आपने देखा होगा, पीठ दर्द रहना, सर दर्द रहना, गर्दन दर्द रहना, और पैरों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, ऐसी समस्याओं में भी योग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि भाई घुटने में दर्द है तो योगा नहीं कर सकते, या पीठ में दर्द है तो योगा नहीं कर सकते, तो इस पर आप थोड़ा सा बताएं।
0: नहीं, हम सब में कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए पीठ दर्द है, मतलब ऐसे में कुछ दो आसन, जैसे आपने पीठ दर्द है तो आपने मकर आसन किया, भुजंग आसन कर लिया, आपको यहीं पे अगर डायबिटीज है
1: जी,
0: ठीक है, तो हमें हमारा जो कटी भाग है, जो हमारा ये कमर का भाग है, उसको प्रॉपर ट्विस्ट करना होता है, तो आपने वक्रासन कर लिया, अर्धमत्स्येंद्रासन कर लिया। यहीं आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो सबका फेवरेट आसन शवासन कर लिया
1: जी।
0: पर शवासन हमें लगता है सबसे आसान आसन है, वो सबसे मुश्किल आसन है
1: शवासन करना भी।
0: जी, क्योंकि हमें लगता है शवासन में लेटना है और सोना है, नहीं, शवासन एक ऐसा आसन है जहां आपको शव की तरह सिर्फ एक्ट करना है, बस आपको जागरूक रहना है कि हो क्या रहा है, बस सिर्फ एक्टिंग करनी है आपके शव के साथ कि उसको आपको हिलाना नहीं है, ठीक है। अब ऐसे हर एक लिमिटेशन के लिए हमारे पास आसन है, वरना प्राणायाम है। तो हम योग में, हम प्रैक्टिसेस में चेंज ले आते हैं व्यक्ति की स्थिति के हिसाब से।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जहां पर आप, चलिए शारीरिक हमारे जो पेन्स हैं उसके बारे में तो हमने बताया, लेकिन आजकल देखा गया है तनाव, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जैसी मानसिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या श्वासों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा भी हमारे इन सारी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि योग क्या होता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन पे काम करता है, और वो क्योंकि हमारे स्ट्रेस हार्मोन पे काम करता है तो उसी के साथ साथ वो रिलैक्सेशन को बढ़ाता है। अब क्यों, स्ट्रेस में क्या होता है, आसन शायद एकदम से वर्क नहीं करेगा, लेकिन प्राणायाम और ध्यान, तो अनुलोम विलोम जिसे हम बोलते हैं वो, और डेली सिर्फ 10 मिनट का ध्यान ब्रीदिंग पे, वो हेल्प करता है। स्लो प्रोसेस है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है उसका।
1: तो मैं समझती हूँ आजकल लोगों को तुरंत असर दिखने के लिए, मतलब हम कहते हैं ना कि भाई जैसे गोली ली आधे घंटे में आपको रिलीफ होना चाहिए, पर योग ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ योग में धीरे धीरे चलता है, पर लॉन्ग टाइम,
0: लॉन्ग टाइम, एंड वो रूट से काम करता है, फिर आपको दोबारा वो नहीं होता।
1: यानी एक तरह से देखा जाए तो धैर्य रखना
0: जी
1: बहुत आवश्यक है, पेशेंस रखना। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आजकल हम पेशेंस बहुत लैक हो रहा है, और मैं समझती हूँ कि जब योग करते हैं तो ये पेशेंस जो है, हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में बहुत सहायता मिलती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप कोई भी आसन कर रहे हैं, अब उस आसन में आपको आज लगा कि आप 5 सेकंड रुक पाते हैं, कल आप 10 सेकंड रुकेंगे, तो वो पेशेंस ही हुआ।
1: सही,
0: आज 5 से कल 10,
1: टॉलरेंस बढ़ा।
0: हाँ, कल 10 से 15, तो वो ऑटोमेटिकली आपके फिजिकल, मेंटल, मानसिक, शारीरिक दोनों पे काम करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम उम्र की बात करते हैं दानिया जी, मैं जरूर जानना चाहूंगी जैसे बच्चों में किस उम्र से किस उम्र तक वो लोग शुरू कर सकते हैं, और बुजुर्गों में, मतलब कई बार ऐसा होता है कि भाई हम तो 50 क्रॉस कर चुके हैं या हम 80 के हो चुके हैं, अब हमसे योगा नहीं होगा, ये सारा कुछ हम नहीं कर सकते, तो ये इस पर भी आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके हमें बताएं।
0: मेरे पास सेंटर में 5 साल से बच्चे आते हैं, हम शुरुआत 3 या 4 साल से कर सकते हैं, पर वो बेसिक मूवमेंट्स से
1: जी,
0: क्योंकि बच्चा फ्लेक्सिबल होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है, तो उसके लिए आसान है अडाप्ट करना, लेकिन आराम से आप 3 नहीं तो 5 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं। और बुजुर्ग में मैं तो कहूँगी, मेरे पास काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन आते हैं, तो कोई एज नहीं है और कोई एज बार

0: इस पर भी आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके हमें बताएं।
1: मेरे पास सेंटर में 5 साल से बच्चे आते हैं, हम शुरुआत 3 या 4 साल से कर सकते हैं, पर वो बेसिक मूवमेंट्स से, क्योंकि बच्चा फ्लेक्सिबल होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है, तो उसके लिए आसान है अडाप्ट करना, लेकिन आराम से आप 3 नहीं तो 5 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं। और बुजुर्ग में मैं तो कहूँगी, मेरे पास काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन आते हैं, तो कोई एज नहीं है और कोई एज बार

0: मैंने क से लेकर म तक के वर्गीय व्यंजनों को 1 से 25 तक के मान दिए हैं, जिन्हें वर्ग स्थान, इकाई, सैकड़ा आदि कहा जाएगा, और य से ह तक के अवर्गीय व्यंजनों का मान 30 से 100 तक निश्चित किया है। जब हम इनके साथ अ, ई, उ जैसे स्वरों को जोड़ते हैं तो वे स्थानमान, प्लेस वैल्यू को दर्शाते हैं।
1: आर्यभट्ट की बात सुनकर वहां बैठा उनका शिष्य लल उत्साह से उछल पड़ता है। अद्भुत गुरुदेव, अद्भुत! इसका अर्थ है कि एक छोटे से शब्द में करोड़ों की संख्या समा सकती है।
0: बिल्कुल। उदाहरण के लिए मेरे गीतिका पाद का केवल एक अक्षर या छोटा सा पद जिसे तुम गा भी सकते हो, उसमें पूरी एक खगोलीय क्रांति की संख्या छिपी होगी। अब तुम्हें बड़े बड़े अंकों की सूचियां रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इन काव्यात्मक श्लोकों को याद रखना है। इसमें दाशमिक, स्थानमान और शून्य का सिद्धांत भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।
1: धन्य हो आचार्य, धन्य हो। आपने गणित को बोझिल आंकड़ों से मुक्त कर कविता जैसा सुरीला और संक्षिप्त बना दिया। अब हम पूरे उत्साह के साथ गीतिका पाद के इन सूत्रों को सीखने के लिए तैयार हैं। इसमें अद्भुत जादू है गुरुदेव, अद्भुत जादू है।

0: आर्यभट्ट स्नेहपूर्वक दोनों शिष्यों को अपने पास बिठाते हैं और तार पत्र पर अक्षरों के अंक मान समझाने लगते हैं। वेदशाला परिसर का एक खुला मैदान है, जहां एक नए वृत्ताकार स्तूप के निर्माण की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जमीन पर खड़िया मिट्टी से चित्र बने हैं। शिल्पी बीमल हाथ में एक डोरी और सूत लेकर परेशान खड़ा है। आर्यभट्ट और लल उनके पास आता है। चिंता में आचार्य को प्रणाम करते हुए बीमल कहता है, आचार्य आर्यभट्ट, मैं एक बड़ी दुविधा में हूं। महाराज ने मुझे 100 हाथ व्यास का एक पूर्ण वृत्ताकार विजय स्तूप बनाने का आदेश दिया है, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी परिधि यानी चारों ओर की दीवार की लंबाई कितनी रखूं ताकि वृत्त टेढ़ा मेढ़ा ना हो। आर्यभट्ट बीमल की चिंता भरी बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और सहानुभूति के साथ कहते हैं,
1: विमल, तुम्हारी यह समस्या सदियों पुरानी है। वृत्त की परिधि और उसके व्यास का संबंध एक जादुई अनुपात में बंधा है। यदि तुम्हें व्यास ज्ञात है तो तुम परिधि अत्यंत सटीकता से निकाल सकते हो। मैंने इस अनुपात का एक निकटतम मान खोजा है, जिसे मैं अपने ग्रंथ गीतिकापाद में लिख रहा हूं।
0: लल उत्साह से कहता है, हां बिमल जी, गुरुदेव का सूत्र कहता है, चतुरधिकम षट मष्ट गुणम, अर्थात 100 में 4 जोड़ो तो कितने होंगे, 104। उसे 8 से गुना करो तो कितना होगा, 832। और फिर उसमें 62,000 जोड़ो तो कितना हुआ।

0: 62,832। यह परिधि तब होगी जब वृत्त का व्यास 20,000 हो। लल की बात सुनकर और खुद स्वयं हैरानी से गणना करते हुए कहता है, अद्भुत आचार्य, इसका अर्थ हुआ कि यदि मैं इस अनुपात को अपने 100 हाथ के व्यास पर लागू करूं तो मुझे परिधि का बिल्कुल सही माप मिल जाएगा।
1: बिल्कुल विमल, और ध्यान रहे यह मान आसन यानी निकटतम है, क्योंकि वृत्त की परिधि को कभी भी पूर्णतः सटीक अंकों में नहीं मापा जा सकता, वह अनंत है।
0: आर्यभट्ट की बात सुनकर विमल अपने आप को धन्य महसूस करता है और अपनी भावना को इस प्रकार प्रकट करता है, आचार्य आर्यभट्ट आप धन्य हैं, गुरुदेव आप धन्य हैं, आपकी इस ज्यामिति ने मेरा काम बहुत सरल कर दिया है, अब मैं आसानी से इस स्तूप का निर्माण कर सकता हूँ। लल भी कह उठता है, गुरुदेव वृत्त के इस जादू के अतिरिक्त आपने जो त्रिकोण की भुजाओं और कोणों के संबंध के लिए जिया यानी साइन और कोजिया यानी कोजिन की जो तालिका बनाई है वह भी तो निर्माण कार्य और खगोल विज्ञान में चमत्कार की तरह है। लल की पीठ थपथपाते हुए आर्यभट्ट हंसते हुए कहते हैं,
1: सही कहा लल, समकोण त्रिभुज के सिद्धांतों और हमारी ज्या पद्धति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री के बिना न तो ऊंचे भवनों का सटीक

0: पूरी सृष्टि के निर्माण का आधार है।
1: आचार की बात सुनकर बिमल कह उठता है, आचार्य आज आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं बिना किसी भय के इस भव्य स्तूप का निर्माण प्रारंभ करूंगा। और यह कहकर बिमल विदा होते हैं। आर्यभट्ट और लल मुस्कुराते हुए उनके रेखा चित्रों को देखते हैं। और दूसरी तरफ राज दरबार का शास्त्रार्थ कक्ष सजा हुआ है। दीवार पर विशाल जल घड़ी घटी का यंत्र रखी है। दरबार में कई विद्वान एकत्रित हैं और वहीं आचार्य सोमदत्त जो अपने रूढ़िवादी विचारों के बारे में जाने जाते हैं और उनके हाथ में एक पुरानी पोथी है जिसे वे क्रोध के साथ पकड़े हुए हैं। और वहीं पास में आर्यभट्ट शांत भाव में बैठे हैं। शास्त्रार्थ प्रारंभ होने वाला है। सोमदत्त जो काफी क्रोधित हैं तीखे स्वर में आर्यभट्ट की ओर उंगली करते हुए दिखाते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, आर्यभट्ट तुम्हारे नए सिद्धांत हमारे पूर्वजों के ज्ञान का अपमान कर रहे हैं। तुम अपने काल क्रियापाद में लिखते हो कि विशाल पृथ्वी घूमती है, यदि पृथ्वी गतिमान है तो हम सब गिर क्यों नहीं जाते? उड़ते हुए पक्षी अपने घोंसलों से भटक क्यों नहीं जाते? यह पूरी तरह असंभव और हास्यास्पद है आर्यभट्ट, हास्यास्पद है। वहीं भास्कर जो आर्यभट्ट का सबसे प्रिय शिष्य है उत्सुकता से कह उठता है, हां आचार्य प्रश्न तो उचित मालूम होता है। संपूर्ण संसार तो यही देखता है कि सूर्य और तारे पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होते हैं, फिर आप इसके विपरीत बात कैसे कह रहे हैं कि पृथ्वी घूमती है? आचार्य बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में वहां बैठे हैं। वे कहते हैं और सबको समझाते हैं,
0: आचार्य सोमदत्त और प्रिय भास्कर, सत्य वह नहीं होता जो केवल आंखों को भ्रमवश दिखाई देता है, बल्कि वह होता है जो गणित संबंधी कसौटी पर खरे उतरे। आप सबने नौका की यात्रा तो अवश्य की होगी।
1: नौका यात्रा का हमारी गतिमान पृथ्वी से क्या संबंध है आर्यभट्ट, क्या संबंध है?
0: गहरा संबंध है आचार्य। अनुलोम गतेर नावस्थ पश्यत चलम विलोमगम यद्वत्, अर्थात जब कोई व्यक्ति नदी में चलती हुई नाव पर बैठता है तो उसे किनारे पर खड़े स्थिर वृक्ष उल्टी दिशा में दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी गोल पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतर घूम रही है। इसी दैनंदिन गति के कारण हमें आकाश का स्थिर तारामंडल और सूर्य विपरीत दिशा अर्थात पूर्व से पश्चिम में घूमते हुए दिखाई देते हैं।
1: भास्कर हैरानी से भर उठता है और आनंद से उछल पड़ता है और कहता है, अद्भुत आचार्य अद्भुत, कितना सरल और अकाट्य तर्क है आपका। इसका अर्थ है कि आकाश के तारे और पिंड वास्तव में स्थिर हैं और गति केवल हमारी पृथ्वी में है।
0: एकदम सही भास्कर, और इसी गति के आधार पर मैंने समय की सूक्ष्म गणना की है। एक वर्ष, मास, दिवस और यहां तक कि युगों का विभाजन भी इसी ब्रह्मांडी

0: या गणित पर आधारित है, न कि किसी दैवीय चमत्कार पर।
1: आर्यभट्ट की बात सुनकर आर्यभट्ट के आचार्य गुरु सोमदत्त अवाक रह जाते हैं और कुछ सोचते हुए कहते हैं, आर्यभट्ट, तुम्हारी इस नौका वाली उपमा ने तो मुझे निरुत्तर कर दिया। गजब हो शिष्य तुम, गजब हो, अद्भुत हो, परंतु क्या समाज इस सत्य को इतनी आसानी से स्वीकार कर पाएगा? आर्यभट्ट कर पाएगा?
0: समाज आज नहीं तो कल इस सत्य को अवश्य स्वीकार करेगा आचार्य, क्योंकि विज्ञान को रूढ़ियों के पिंजरे में अधिक समय तक कैद नहीं रखा जा सकता।
1: उनकी बात सुनकर भास्कर कहते हैं, गुरु आप महान हैं, गुरु हृदय मेरा संगीतमय हो गया, मन गीत गाने को करता है।

0: भास्कर आदरपूर्वक आर्यभट्ट के सामने सिर झुकाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। वेदशाला की खुली छत है, रात का समय है और पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है। गांव में लोग डर से शंख और थालियां बजा रहे हैं। आकाश में पूरा चंद्रमा धीरे धीरे काला पड़ने वाला है। माता देवकी, जो कुसुमपुर की एक आम ग्रामीण महिला है, जो रूढ़ियों में विश्वास रखती है, हांफती हुई वेदशाला में आती है और घबराते हुए स्वर में आचार्य आर्यभट्ट को संबोधित करती है। आचार्य आचार्य, आप लोग यहाँ शांत कैसे बैठे हैं? देखिए, आकाश में राहु दानव ने चंद्रमा को निगलना शुरू कर दिया है। आचार्य, जल्दी चलिए, गंगा स्नान और दान पुण्य कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आचार्य, अनर्थ हो जाएगा। वहीं पर लल हैं, जो मुस्कुराते हुए कहते हैं, माता शांत हो जाओ, माता यहां ऊपर आओ और इस गोल यंत्र के माध्यम से सत्य को देखो। आकाश में कोई राक्षस नहीं है। देवकी अविश्वास से, क्या कह रहे हो युवक? सदियों से हमारे पुरखे यही मानते आए हैं, अगर राहु नहीं है तो चंद्रमा को कौन निकल रहा है?
1: माता, आंखें बंद कर लेने से रात नहीं होती। सत्य तो यह है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। मुच्छायाम स्वग्रहेण चंद्रो गृहनात यसौ महतिम, अर्थात जब घूमते हुए हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच में आ जाती है, तब पृथ्वी की विशाल छाया चंद्रमा पर पड़ती है, यही चंद्र ग्रहण कहलाता है।
0: देवकी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है। क्या कहा, पृथ्वी की छाया? पर आचार्य, फिर सूर्य ग्रहण क्या है? क्या उसे भी पृथ्वी ढकती है?
1: नहीं माता, जब चंद्रमा घूमते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तब वह अपनी ओट से सूर्य को ढक लेता है। इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह केवल प्रकाश और छाया का एक साधारण खगोलीय खेल है, जिसे हम गणित से पहले ही जान सकते हैं।
0: लल मुस्कुराते हुए कहता है, तो माता आपने देख लिया? देखिए, गुरुदेव ने अपने गोल पाद में इन ग्रहणों के शुरू और समाप्त होने का जो समय गणित से निकाला था, ठीक उसी पल यह ग्रहण लग रहा है। देवकी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अद्भुत आचार्य, अद्भुत, आपने तो मेरे मन का सारा डर ही दूर कर दिया, जिसे हम भगवान का कोप समझते थे। वह तो प्रकृति का एक सुंदर नियम निकला आचार्य, नियम निकला। और इस घटना के बाद कुछ दिनों बीत जाने पर अब नालंदा के समीप आर्यभट्ट अपनी कुटिया में बैठे हैं। ढलते हुए सूरज की किरणें तार पत्रों की

0: पांडुलिपियों पर पढ़ रही है। आर्यभट्ट वृद्ध हो चुके हैं और एक लकड़ी की पेटिका में, यानी जो संदूक है, उसमें अपनी जीवन भर की कमाई आर्यभट्ट ग्रंथ की मूल प्रति रख रहे हैं। राजा बुधगुप्त, मगध के सम्राट, जो विज्ञान और कला के संरक्षक हैं, और वहीं समीप आर्यभट्ट के सबसे प्रिय शिष्य भास्कर भी बैठे हैं। आचार्य को संबोधित करते हुए राजा बुधगुप्त कहते हैं, आचार्य, आपके इस अद्भुत ग्रंथ आर्यभट्टीय ने मगध का गौरव पूरे आर्यावर्त में बढ़ा दिया है, परंतु मुझे गुप्तचरों से ज्ञात हुआ है कि कुछ रूढ़िवादी ज्योतिषी आपके सिद्धांतों से भयभीत हैं। वे इस अमूल्य पांडुलिपि को नष्ट करने या इसके श्लोकों को बदलने या तोड़ मरोड़ करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। समीप बैठे भास्कर क्रोध और चिंता से गरज उठता है। हां गुरुदेव, वे कहते हैं कि आपकी स्थापना की पृथ्वी घूमती है और ग्रहण का कारण राहु केतु नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों के विरुद्ध है। वे इसे समाज के लिए घातक बता रहे हैं। हमें इस ग्रंथ के संरक्षण के लिए कुछ करना होगा। शांत भाव से मुस्कुराते हुए आर्यभट्ट सब की बात सुनते हैं और कहते हैं,
1: राजन और प्रिय भास्कर, सत्य को किसी राजकीय सेना के पहरे की आवश्यकता नहीं होती। अज्ञान का अंधकार चाहे कितना गहरा हो, वह ज्ञान के सूर्य को सदा के लिए नहीं ढक सकता। विरोध तो केवल इस बात का प्रमाण है कि हमने रूढ़ियों की जड़ों को हिला दिया है।
0: राजा बुधगुप्त अति उत्साह में कहते हैं और चिंता व्यक्त करते हैं, फिर भी आचार्य, हम इस ज्ञान को लुप्त होने से कैसे बचाएंगे? भास्कर कहता है, गुरुदेव, मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण आपके इस ग्रंथ की रक्षा और इसकी विस्तृत व्याख्या लिखने में लगा दूंगा। मैं देश के कोने कोने में आपके शिष्यों की एक ऐसी श्रृंखला तैयार करूंगा जो इस गणितीय सत्य को कभी मरने नहीं देगी। भास्कर के सिर पर हाथ रखकर बहुत ही खुशी के साथ आर्यभट्ट कहते हैं,
1: मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है भास्कर, आने वाली सदियां तुम्हारे इस प्रयास की ऋणी रहेंगी। याद रखना, आज भले ही हमारे सिद्धांतों पर विवाद हो रहा है, पर आने वाले भविष्य में जब मानव की बुद्धि अधिक तार्किक होगी, तब वे जान पाएंगे कि यह ब्रह्मांड केवल और केवल गणित संबंधी नियमों से संचालित होती है।
0: राजा बुधगुप्त आर्यभट्ट की बात सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके सामने नतमस्तक होते हुए कहते हैं, आचार्य, आपका यह ग्रंथ केवल भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की अनमोल विरासत है। आचार्य, अनमोल विरासत है जिसे सदियों तक लोग याद रखेंगे।
1: हाँ राजन, और एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत अपनी वैज्ञानिक चेतना को पुनः जागृत करेगा।
0: भास्कर अश्रुपूर्ण आंखों से आर्यभट्टीय की मंजूषा को अपने हाथों में लेते हैं। सूरज एक नए युग की सुबह का संकेत दे रहा है। कुसुमपुर की वेदशाला के पीछे बनी एक छोटी सी कुटिया रात्रि का अंतिम प्रहर है। झरोखे से आकाश के तारे और ढलता हुआ चंद्रमा दिखाई दे रहा है। आर्यभट्ट

0: दुर्बल अवस्था में लेटे हैं। उनकी सांसें धीरे धीरे सहम सहम कर चल रही है। भास्कर अपने गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, उनके पैर दबा रहे हैं और लल लगातार इस प्रयास में लगा है कि दीपक की लौ बुझ ना पाए। अपनी भरी आंखों से जिसमें आंसू हैं, धीमे स्वर में भास्कर कहता है, गुरुदेव, वैद्यराज ने कुछ और औषधियां दी हैं, कृपया थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए और उन औषधियों को भी खाइए। आपका यह स्वास्थ्य हमें अत्यंत चिंतित कर रहा है गुरुदेव, अत्यंत चिंतित कर रहा है, साथ में पीड़ा भी दे रहा है। आर्यभट्ट जो वृद्ध हो चुके हैं, बहुत ही धीमी और शांत मुस्कान के साथ कहते हैं,
1: भास्कर, लल, अब इन औषधियों का समय समाप्त हो चुका है। पंच तत्वों से बना यह नश्वर शरीर अब अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। देखो, आकाश में भोर का तारा कितनी तेजी से चमक रहा है। देखो, वह मुझे बुला रहा है, भास्कर, बुला रहा है।
0: ऐसा मत कहिए आचार्य, ऐसा मत कहिए। अभी आर्यावर्त को तो आपके ज्ञान की और आवश्यकता है गुरुदेव, और आवश्यकता है। आपके बिना हमारी वेदशाला सूनी हो जाएगी आचार्य, सूनी हो जाएगी। गणित का यह जादुई संसार अंधकार में डूब जाएगा गुरुदेव, डूब जाएगा।
1: अज्ञानता की बातें मत करो लल, क्या सूर्य के अस्त होने से प्रकाश सदा के लिए नष्ट हो जाता है? नहीं, वह केवल अगली सुबह की तैयारी करता है। मैंने आर्यभट्टीय के रूप में जो सत्य खोजा था, वह ज्ञान का दीपक अब मैं तुम दोनों के हाथों में सौंप रहा हूं।
0: आर्यभट्ट की बात सुनकर भास्कर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, आपका अंतिम आदेश क्या है? गुरुदेव, हम आपकी इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाएंगे? गुरुदेव, कैसे आगे बढ़ाएंगे?
1: मेरा अंतिम संदेश सदैव स्मरण रखना, कभी भी किसी सिद्धांत को केवल इसलिए मत मानना क्योंकि वह पुराना है या किसी ग्रंथ में लिखा है। अपनी बुद्धि को स्वतंत्र रखना, केवल उसी को सत्य मानना जो गणित, तर्क और वैध की कसौटी पर खरा उतरे। रूढ़ियों के अंधकार को केवल विज्ञान का प्रकाश ही मिटा सकता है।
0: गुरुदेव की बात सुनकर लल भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं, हम आपके संदेश को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएंगे आचार्य, अपने जीवन का उद्देश्य बनाएंगे। और तभी आकाश की ओर देखते हुए आर्यभट्ट के चेहरे पर एक असीम शांति छा जाती है और वे बोल उठते हैं,
1: मेरा समय आ गया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और मैं इस अनंत ब्रह्मांड के महाप्रकाश में विलीन हो रहा हूँ।

कहकर आर्यभट्ट अपनी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन उनके जो दिए गए सिद्धांत हैं वे भास्कर और लल के माध्यम से आगे के लिए जीवित रहते हैं। तभी तो कहते हैं कि जिंदगी हमेशा चलती रहती है, जिंदगी चलने का नाम है।

0: तो प्रिय श्रोतागण, आप कहानी सुन रहे थे आर्यभट्ट, महान वैज्ञानिक, जो बिहार की भूमि में ही उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया। तो इस कहानी का केंद्रीय संदेश क्या है? संदेश यह है कि ज्ञान, जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच मानव प्रगति के सबसे बड़े आधार होते हैं। जब समाज अनेक रूढ़ियों और परंपरागत धारणाओं में बंधा हुआ था, तब आर्यभट्ट ने सत्य की खोज के लिए तर्क, गणना और अनुभव का मार्ग अपनाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि केवल परंपरा का अनुसरण करना पर्याप्त नहीं है, सत्य को समझने के लिए प्रश्न पूछना और खोज करना भी आवश्यक होता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि शिक्षा और ज्ञान समाज को आगे बढ़ाते हैं। अंधविश्वास की अपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण होता है। नई सोच और नवाचार मानव सभ्यता के विकास का आधार है। सत्य को स्वीकार करने का साहसी महानता की पहचान है। तो गुरु विश्वास, अब हमारा समय होता है लोकोक्तियों का
1: जी।
0: तो इस बार की जो लोकोक्ति भोजपुरी में हम पूछने जा रहे हैं अपने श्रोताओं से, वह है भोजपुरी में, अपनी दही के केहू खट नाही कहेला। फिर से सुन लीजिए, अपनी दही के केहू खट नाही कहेला, और हिंदी में है कंगाली में आटा गीला। अच्छा। इस पर हम अगले कार्यक्रम में विचार विमर्श करेंगे। पिछली बार जो लोकोक्तियां पूछी गई थी वह भोजपुरी में थी, अंगूरी धरत धरत पहुंचा पकड़ ली ले।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है थोड़ी सी मदद मिलने पर और अधिक की मांग करना या सहारा पाकर धीरे धीरे पूरे अधिकार पर कब्जा जमा लेना।
0: जी, और हिंदी में जो लोकोक्ति पूछी गई थी, जिस पर गुरु विश्वा अपने स्वरचित छोटी सी कहानी भी सुनाएंगे, वह यह है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं।
1: जी हाँ, इसका भावार्थ है, जो ज़्यादा धमकी देते हैं वे प्रायः कुछ नहीं करते। श्रोताओं, इस पर आधारित एक छोटी सी कथा है, इसका रसास्वादन कीजिए। मोहन और सोहन अच्छे मित्र थे। मोहन हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता रहता कि मैं यह करूँगा, मैं वह करूँगा, पर गंभीरता पूर्वक कोई भी काम कभी नहीं करता था। दूसरी ओर सोहन शांत रहकर कोल्हू के

0: बैल की तरह कठोर परिश्रम करता था और अपने खेत को हमेशा हरा भरा रखता था। अंत में सब ने यह समझा कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, असली सफलता मेहनत से मिलती है, दिखावे से नहीं। श्रोताओं,
1: बिल्कुल सही आपने कहा। इसीलिए जब रावण से युद्ध होता है तो राम भी इसी को कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। क्योंकि राम का जो व्यक्तित्व है वह बहुत ही शालीनता का है, वो कर्म करने में विश्वास रखते हैं।
0: इसीलिए अंग्रेजी में भी कहा गया है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस।
1: यस। तो प्रिय श्रोतागण, हर खोज की शुरुआत एक प्रश्न से होती है और हर महान उपलब्धि के पीछे जिज्ञासा, परिश्रम और सीखने की इच्छा छिपी होती है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा शिक्षक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता या प्रेरक व्यक्ति रहा है जिसने आपको ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी हो? क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान अपनी सोच, मेहनत और नवाचार से खोजा हो? अनकही एक कहानी आपको आमंत्रित करता है अपनी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हमें लिखकर भेजने के लिए जो शिक्षा, विज्ञान, शोध, नवाचार और ज्ञान की शक्ति से जुड़ी हो। आपकी चुनी हुई कहानियां हमारे रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित की जाएंगी और आगे चलकर एक पुस्तक का हिस्सा भी बनेंगी। तो आइए, महाज्ञानी आर्यभट्ट से प्रेरणा लेते हुए हम भी ज्ञान, जिज्ञासा और विज्ञान, अपनी रचनाएं भेजिए इस ईमेल पर professorrajshekhar@gmail.com। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपने सोच को स्वर दीजिए, क्योंकि कौन जानता है, आपकी एक छोटी सी कहानी किसी बच्चे के मन में ज्ञान का नया दीप जला दे। धन्यवाद, नमस्कार।
0: इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए प्रोफेसर राज जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कहा गया है, यथा पुष्पे सुगंधः स्यात्, यथा नद्यां प्रवाहिता, तथा प्रकृत्यां गणितं च नियम बद्धम प्रवर्तते। अर्थात जैसे फूल में सुगंध और नदी में प्रवाह स्वाभाविक होता है, वैसे ही प्रकृति में गणित के नियम व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं। श्रोताओं, प्रकृति के सभी कार्य, ऋतु परिवर्तन, ग्रहों की गति, दिन रात का चक्र आदि गणित के ही नियमों के माध्यम से समझे जा सकते हैं। श्रोताओं, गणित केवल मनुष्य द्वारा निर्मित विषय नहीं है, बल्कि यह प्रकृति में पहले से ही विद्यमान सार्वभौमिक यूनिवर्सल सिद्धांत है। तो प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राज को विदा दीजिए। अगले सप्ताह फिर एक ऐसी ही रोचक व ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हम आपसे जुड़ेंगे। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को कोटिशः धन्यवाद और नमस्कार।

0: सबसे पहले आज की बड़ी खबरें रंगाना देन पर्याची और सुदेश कालीचरण को शर्त पर रिहा किया गया एफसीसी ने पोर्ट भी अदालत में पुष्टि की कि दोनों और मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल लिमिटेड की मुर्शिद शाखा की निदेशिका करीना ने जिस के बीच फोन पर 30 बिलियन रुपए का ठेका दिलवाने की बात हुई थी। दवाओं और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के आयात के सिलसिले में अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी को कायम किया गया, दाम घटाने और तय करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। आज मुसलमान कौम के लिए नए इस्लामी साल का आगाज, ये 1448 हिजरी है, मुहर्रम महीना एक मुकद्दस माह माना जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जुम्मे को ईरान के साथ तय किए जाने वाले समझौते को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। नमस्कार, रादाब। आज सुबह पोटली अदालत में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने पुष्टि की कि सुदेश कालीचरण, रंगानादेन पर्याची और करीना नेक्जुस के बीच फोन पर बात हुई थी। मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल लिमिटेड को सन 2023 में 30 बिलियन रुपए का ठेका दिलवाने के सिलसिले में बात हुई, जबकि उस वक्त ये कंपनी बिडिंग एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं थी। इन बातचीत से कंपनी को ईंधन की सप्लाई के लिए ठेका मिल गया। सुदेश कालीचरण और रंगानादेन पर्याची को शर्त पर रिहा किया गया। हर एक को 8 लाख रुपए की जमानत चुकानी पड़ी और 10 मिलियन रुपए के रिकॉग्निजेंस फी पर दस्तखत करने पड़े। 16 जून की तारीख दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतीकात्मक है। युवा दिवस कल मनाया गया, जो 1976 में सोवियतो की घटना की याद में रहा। हजारों की तादाद में छात्रों ने उस वक्त भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। आज 50 साल बाद मॉरिशस में दक्षिण अफ्रीका की सिफारत ने ऑरम गॉर्डन थियानो में एक औपचारिक रिसेप्शन का आयोजन किया। मौके पर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम खास मेहमान थे। कूटनीतिक दल के मेम्बरानों की भी हाजिरी रही है। सागाउनो अदिति गनोफ्तार।
1: सोवियतों से जुड़ी यादें दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक स्मृति में गहराई से बसी हुई हैं। 16 जून 1976 को हजारों छात्र बेहतर शिक्षा और न्याय की मांग को लेकर सोवियतों की सड़कों पर उतरे थे। ये आंदोलन रंग भेद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीकों में से एक बन गया। 50 साल बाद आज भी दक्षिण अफ्रीका में इस तिथि को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2: The African Leadership College that you host in Mauritius.
3: It is happening on the
1: ये मौका दक्षिण अफ्रीका में सोवियतो की पुनर्जागृति के संदर्भ में आया है। उस समय छात्रों ने अफ्रीकी भाषा और सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। आज का मौका इसलिए भी खास है क्योंकि अफ्रीकी बाल दिवस के साथ साथ हम दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता भी मना रहे हैं।

0: ऑफ साउथ अफ्रीका।
1: इस समारोह के अंतर्गत दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोग संबंधों का उल्लेख किया गया। साथ ही सोवियतो के युवाओं की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका के बीच के घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि की गई।
2: पुर्तगाल के नए राजदूत ने आज गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल को अपना परिचय पत्र पेश किया। स्टेट हाउस रेजी में जोर्ज मैनुएल डानकोन्हा मोंटेरो ने और गणराज्य के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय रिश्तों पर बात की। खासतौर पर सहयोग की नई संभावनाओं पर चर्चाएं हुई, जैसे रिन्यूएबल ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी वगैरह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जुम्मे को ईरान के साथ तय किए जाने वाले समझौते को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। परसों स्विट्जरलैंड में दस्तखत समारोह निर्धारित हैं। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ये संधि तय न हुई तो अमेरिका फिर से बमबारी करने लगेगा। आस्था गोविंदमन।
3: G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौता चर्चा के केंद्र में रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक प्रारंभिक सहमति बन गई है। अमेरिका का कहना है कि अब तकनीकी स्तर पर बातचीत आगे बढ़ेगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कार्यों में फिर से शामिल किए जाने की बात भी कही गई है। दूसरी ओर ईरान ने पुष्टि की है कि शुक्रवार से स्विट्जरलैंड में नए दौर की वार्ताएं शुरू होंगी। हालांकि तेहरान का कहना है कि से अब भी अमेरिका पर गहरा अविश्वास है और ये समझौता केवल तनाव कम करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान की मध्यस्थता और कतर के सहयोग की भी अहम भूमिका रही है। कतर ने उम्मीद जताई है कि ये पहल क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद करेगी और आगे की बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करेगी। कतर ने ये भी उम्मीद जताई है कि होर्मुज जलमार्ग में नौवहन सामान्य होने से गैस की आपूर्ति फिर सुचारू रूप से जारी रह सकेगी। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यदि शुक्रवार को समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर हो जाते हैं तो होर्मुज को फिर से पूरी तरह खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में बाजार इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य होती है और तेल आपूर्ति पर अनिश्चितता कम होती है तो कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव घट सकता है। इसका सकारात्मक असर वैश्विक शेयर बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल सबकी नजर शुक्रवार को प्रस्तावित हस्ताक्षर और उसके बाद शुरू होने वाली वार्ताओं पर है, जिससे ये साफ होगा कि ये प्रारंभिक सहमति आगे चलकर व्यापक समझौते का रूप ले पाती है या नहीं।
2: जी हाँ, सबकी नजरें और सबकी उम्मीद इस समझौते पर हैं ताकि आप नए होर्मुज से फिर से कश्तियों का गुजारा हो सके। दवाओं और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के आयात के सिलसिले में मॉरिशस में एक अंतर मंत्रिस्तरीय कमेटी को कायम किया गया। दाम घटाने और तय करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी। आर्थिक ऑपरेटरों का मानना है कि दूसरे प्रस्ताव भी देखना जरूरी है ताकि दामों में और गिरावट आए। यासीन दीन मोहम्मद, करुणा लालू।
4: समानांतर आयात की नीति से कई व्यापारी किसी एक ही ब्रांड के उत्पादों को अलग अलग देशों से आयात कर सकेंगे केवल आधिकारिक प्रतिनिधि से गुजरे बिना ही। यदि इसके पक्षधर कीमतें कम होने की बात कर रहे हैं, तथापि नियंत्रण का मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मॉरिशस में इस विकल्प पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है, खासकर भारी उपभोक्ता वस्तुओं, दवाओं और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के लिए।
5: Ça option là définitivement il amène plus compétition et le but même de sa importation parallèle là, commerce parallèle, c'est réduction des prix. Alors, comment nous connaît nous Maurice, nous dépend beaucoup l'eau ban produit importé. Et en même temps, nous avons une institution de protection des consommateurs, les bisins opèrent d'une façon bien efficace.
6: C'est un rapport d'experts, comme le rapport de Tutoi, qui dit comme ça, Maurice, il y en a encore bien évolué dans ce côté conformité, dans ce côté régulation, dans ce côté capacité, pour capable qui dans le temps, nous avons besoin d'un temps encore, pour capable considérer un changement de régulation dans sa cycle.
4: वही चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि केवल कीमतों पर नहीं बल्कि पूरे आर्थिक तंत्र पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखना जरूरी है।
6: Est-ce qu'il nous capable mettre en péril en

0: question ben, l'industrie, quand on peut dire l'industrie, c'est pas seulement production, c'est aussi ben, distribution, une compagnie qui investit énormément dans warehouse, qui a ben, un emploi majeur autour de cela. Donc, extrêmement, extrêmement important.
1: एक बैठक के दौरान डीलर्स इन इम्पोर्टेड व्हीकल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जाहिद आमिया ने मोनोपोली यानी एकाधिकार का उल्लेख किया।
2: Par exemple, à Motissière, NPA Motissière, qui a une agence qui a vendu 50 000 roupies, nous avons une vidéo avec une marque répétée qui est correcte, 20 000, 25 000 roupies pour même qualité. Un de l'huile pour un loto spécifique pour une marque qui n'est pas enregistrée, tu peux vendre 2500, 2800. Comment l'enregistrer, même de l'huile boîte de vitesse, c'est 8 000 roupies.
1: Un canusar X. क्षेत्र में नकली उत्पादों की समस्या चर्चा में नहीं रही।
2: Dans un nouveau type de véhicule, il y a un ECU. C'est-à-dire, n'importe quelle pièce électronique nous changez, nous devons passer par ça ECU-là, nous devons accepter pour nous capables de rouler le véhicule-là. Et il n'est pas dans l'intérêt des autres fabricants pour fabriquer un fake spare part électronique parce qu'il est pour résister par le système. Et dans un dernier rapport qu'il fait par l'Union européenne, il y a une diminution constante de fake product.
1: Spare parts qui sont plus bas,
3: Maurice, il y a beaucoup de machines de recall et qui ne sont pas pareilles que l'agence. Les gens qui ont l'agence, ils ont payé la pièce là.
1: उनका मानना है कि समानांतर आयात से जरूरी नहीं कि मौजूदा अधिकृत वितरकों को नुकसान हो।
3: मंत्रालय
1: के स्तर पर समानांतर आयात और स्पेयर पार्ट्स पर प्रॉफिट मार्जिन की अधिकतम सीमा तय करने की संभावना पर अभी अध्ययन जारी है।
4: बुलेटिन की शुरुआत में हम बता रहे थे कि एफसीसी ने पुष्टि की कि सुरेश कालीचरण रंगानाथन पराची और करीना नेक्सस के बीच फोन पर बात हुई थी। मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल लिमिटेड को सन 2023 में 30 बिलियन रुपए का ठेका दिलवाने के सिलसिले में, जबकि उस वक्त ये कंपनी बिडिंग एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं थी। मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप का मामला करीब 3 सालों से एफसीसी की जाँच की वजह है, जिसमें कई गिरफ्तारियां की गई हैं। शहजाद जुमन, अदिति गनवाफ्तार।
5: 7 जून 2023 को एसटीसी की प्रशासनिक परिषद ने मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद 1 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024 की अवधि के वास्ते मॉरिशस के लिए ईंधन आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट ओक्यू ट्रेडिंग को देने की मंजूरी दी थी। इसके 22 दिन बाद यानी 29 जून को यही कॉन्ट्रैक्ट आखिर में सिंगापुर की कंपनी मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जो मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की सहायक कंपनी है। इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया और उसकी वित्तीय शर्तों पर तुरंत सवाल उठने लगे। लेबर पार्टी के सांसद ऐशान जुमन भी स्पष्टीकरण मांगने वालों में शामिल थे।
6: STC décide à la surprise de tout le monde pour allouer sa contrat là à une huitième compagnie qui participe de l'appel d'offres.
5: इन सवालों के समक्ष STC ने 11 सितंबर 2023 को सार्वजनिक रूप से अपने फैसले का बचाव किया। उसने दावा किया कि MMG के प्रस्ताव में कई वित्तीय लाभ थे, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर के बजाय मॉरिशन रुपए में भुगतान। एक ऐसा सूत्र जो STC के अनुसार एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करता है। अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय सभा में नई व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्री ने ये जानकारियां दोहराई।
7: In view of a better offer received from Mercantile and Maritime Investment Private Limited.
8: It's an unsolicited bid after MMG took account of the result of the tender that happened, which was a public tender, the figures were open. MMG then offered a lower price.
5: 2025 की शुरुआत में Financial Services Commission ने इस मामले की जांच शुरू की। इसके तहत एसटीसी और एमएमजी के दफ्तरों तथा मॉरिशस में इस कंपनी की निदेशिका करीना नेसियस के घर पर छापे मारे गए। 28

0: अप्रैल 2025 को उसे कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग के अस्थाई आरोप पर गिरफ्तार किया गया और फिर जमानत पर रिहा किया गया। इसके बाद जांच का ध्यान कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित वार्ताओं पर केंद्रित हुआ। विभिन्न स्तरों पर हुए कम्युनिकेशंस और लिए गए फैसलों की जांच की गई। इसके बाद 13 जून 2025 को एसटीसी के पूर्व निदेशक राजीव सेवान सिंह को हिरासत में लिया गया। उसी दिन जारी एक बयान में एफसीसी ने संकेत दिया कि उन्होंने ऐसे कदम उठाए थे कि $691.9 मिलियन का पेमेंट मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया जाए।
1: और आपको बता रहे थे कि इस सिलसिले में सुरेश कालीचरण और रंगा नारायण परयाची को गिरफ्तार किया गया और आज शर्त पर उन्हें रिहा किया गया। दोनों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन फॉर अनदर पर्सन का अस्थाई आरोप दर्ज है। हर एक को 8 लाख रुपए की जमानत चुकानी पड़ी और 10 मिलियन रुपए के रिकॉग्निजेंस फी पर दस्तखत करने पड़े। कुणाल गोजी, करुणा लालू।
0: 7 जून 2023 को एसटीसी की प्रशासनिक परिषद ने मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद 1 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024 की अवधि के वास्ते मॉरिशस के लिए ईंधन आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट ओक्यू ट्रेडिंग को देने की मंजूरी दी थी। इसके 22 दिन बाद यानी 29 जून को यही कॉन्ट्रैक्ट आखिर में सिंगापुर की कंपनी मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जो मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की सहायक कंपनी है।
2: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अदालत को बताया कि सुदेश कालीचरण और रंगा नारायण परयाची तथा मैरिटाइम मर्केंटाइल इंटरनेशनल कंपनी की स्थानीय प्रतिनिधि करीना नेसियस के बीच टेलीफोन बातचीत के प्रमाण मिले हैं। उस समय वे व्यापार मंत्री और वित्त मंत्री के पद पर थे। एफसीसी के अधिकारी अब्दुल रहमान के अनुसार ये बातचीत टेलर मेड स्पेसिफिकेशंस यानी कि खास रूप से तैयार की गई शर्तों से जुड़ी थी, जिनका उद्देश्य मैरिटाइम मर्केंटाइल इंटरनेशनल को लाभ पहुंचाना था। बहरीन स्थित कंपनी को एसटीसी को अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक ईंधन आपूर्ति के लिए कुल 30 बिलियन रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के लिए चुना गया था, जबकि कंपनी टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं थी। दोनों पूर्व मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के लिए कार्रवाई चलाई जा रही है। उनके वकील रोशन संतुकी और रईस बुलबुल ने एफसीसी द्वारा लगाए गए इन आरोपों का खंडन किया। वहीं एफसीसी के प्रतिनिधि वकील गिरीश बंधु ने उनकी जमानत पर रिहाई का विरोध नहीं किया। सुदेश कालीचरण और रंगा नारायण परयाची को 8 लाख रुपए की जमानत और 10 मिलियन रुपए की रिकॉग्निजेंस पर रिहा किया गया है। जमानत के अलावा मजिस्ट्रेट बिसुन ने दोनों पूर्व मंत्रियों को इस मामले से जुड़े अन्य लोगों से संपर्क न करने का आदेश दिया, खास रूप से एसटीसी के पूर्व बोर्ड सदस्यों और पूर्व महानिदेशक राजीव सेवान सिंह, जिन पर इसी मामले के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। एमएसएम के लीडर प्रवीण जगनाथ ने अपने दो पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी।
3: persécution politique, arrêtement de l'opposition, surtout, mais ça peut continuer et m'attendre mon next on the list. Alors nous tout piétons, chacun piétons surtout. Mais s'il y en a un seul secteur qui peut développer dans ce pays-là, c'est le secteur persécution. C'est même tout qui peut développer. Tout le monde peut trouver.
2: सुदेश कालीचरण और रंगा नारायण परयाची अब 28 अक्टूबर को फिर से अदालत में पेश होंगे। इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।
1: अन्य खबरों में आज मुस्लिम कौम के लिए नए इस्लामी साल का आगाज हुआ। ये 1448 हिजरी है। मुहर्रम महीना एक बहुत ही मुकद्दस माह है। सबसे अजीम वाकया करबला है और हज़रत मूसा का वाकया भी बहुत ही अहम है। हज़रत मुहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने दीन और हक़ के लिए अपनी जान दी थी। इस महीने की 10वीं तारीख बहुत अहम है, जिसे योम आशूरा कहा जाता है। इस्लामी तकवीम यानी कैलेंडर में 354

0: वन या 355 दिन होते हैं और इसका आगाज मुहर्रम महीने से होता है। आज पहली तारीख से बाकायदा नए इस्लामी साल की शुरुआत हुई है। मजहब इस्लाम में मुहर्रम सबसे अहम माहों में शुमार है और इसे बहुत मुकद्दस माना जाता है। इस महीने की सबसे अहम तारीख 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा है। इस दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके वफादार साथियों ने करबला के मैदान में हक और सच्चाई के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। ये 1448 का साल है। हस्ब दस्तूर नई हिजरे के मौके पर मक्के की बड़ी मस्जिद में काबे का कपड़ा यानी किस्वा को बदला जाता है। मुहर्रम के महीने में कई अहम इस्लामी वाकयात से मंसूब रिवायतें मिलती हैं। रिवायतों के मुताबिक इस महीने में और भी अहम वाकयात हुए, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तूफान के बाद बसलामती किनारा मिला था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली और फिरौन गरक हुआ था, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निजात पाकर बाहर आए और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली। मुहर्रम हमें सब्र, हिम्मत, इंसाफ और दीन का पैगाम देता है। आशूरा का दिन इबादत, दुआ और नेक अमाल करने की भी अहमियत रखता है। आज रात से मुल्क की कई मस्जिदों में मजलिस मुनाकिद किए जाएंगे, तकरीरें की जाएंगी और जिक्र इलाही के अलावा तिलावत कुरान भी की जाएगी। पूरे मुसलमान कौम को नया इस्लामी साल 1448 हिजरी मुबारक हो। और फुटबॉल में एक बार फिर फ्रांस ने मैदान के शेर लियोनेल मेसी का कमाल देखा। उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप हैट्रिक कायम कर दिया अपने 16वें गोल करके। लियोनेल मेसी ने साबित कर दिया कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने अल्जीरिया के मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए 3 गोल कर दिए। फुटबॉल परस्तारों के लिए ये मैच काफ़ी यादगार रहेगा। और कल फ्रांस और सेनेगल के बीच भी मुकाबला हुआ। फ्रांस ने सेनेगल को यानी फ्रांस की जीत हुई है 3-1 से।
1: पोर्टुगल अपना वर्ल्ड कप का आगाज ग्रुप के में एकदम साफ मकसद के साथ कर रहा है। पहले मैच में ही ऐलाने जंग के साथ जोरदार प्रहार करना। टूर्नामेंट की फेवरेट टीमों में से एक पुर्तगाली टीम ला सिलेसाओ की नज़र अपने पहले वर्ल्ड कप जीतने पर है और रास्ता दिखाने के लिए टीम में एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वितिन्हा और ब्रूनो फर्नांडेज। उधर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य साल 1974 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में वापस आ रहा है। मजबूत और हिम्मती टीम केप वर्दे जैसा प्रदर्शन दोहराना चाहेगी और पुर्तगाल के खिलाफ बड़ा उलटफेर करने के लिए कोशिश करेगी। ग्रुप एल में यह पहले दिन के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक है। इंग्लैंड का सामना क्रोएशिया से होगा। इस ग्रुप से क्वालिफाई होने के लिए ये दो प्रबल दावेदार हैं। यूरो 2024 के फाइनलिस्ट और 1966 के बाद दूसरी बार खिताब जीतने की आस लेकर द थ्री लायंस का इरादा एकदम साफ है, अपने खेल से छाप छोड़ना और अपना रुतबा साबित करना। इस मुश्किल काम के लिए इंग्लिश टीम हैरी केन और जूड बेलिंगम जैसे टॉप खिलाड़ियों पर भरोसा कर रही है। सामने क्रोएशिया की टीम अभी भी अपने पुराने अनुभव और बड़े मैच खेलने की काबिलियत पर टिकी है। 2022 वर्ल्ड कप में तीसरा स्थान लेने वाली यह टीम अब हर टीम को चुनौती देने और इस ग्रुप में मजबूत संदेश भेजने के लिए तैयार है।
0: जहां पुर्तगाल और कोंगो के बीच आज रात 9 बजे मुकाबला होगा, इंग्लैंड और क्रोएशिया 12 बजे मैच खेलेंगे और जबकि गाना और पनामा के बीच रात के 3 बजे मुकाबला होगा। और अब फ्रांस और सेनेगल के बीच कल खेले गए मैच पर अरविंद बिसेसो की रिपोर्ट।
1: किलियान एम्बापे और फ्रांस की टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में कामयाब शुरुआत। फर्स्ट हाफ में कुछ मुश्किलों के बावजूद ले ब्लू ने सेनेगल की चुनौती का सामना करने का रास्ता ढूंढ ही लिया। मेटलाइफ स्टेडियम में तिरंगा लायंस ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे, लेकिन न तो निकलास जैक्सन और न ही इस्माइल असा कामयाबी हासिल कर पाए। हाफ टाइम के बाद खेल की रफ्तार पूरी तरह बदल गई। 86वें मिनट में

हैं। किलियान एम्बापे ने पहला गोल स्कोर करके फ्रांस का खाता खोला। इसके बाद 82वें मिनट पर देजिरे डुए के पास पर बाकोला ने दूसरा गोल करके बरहत को मजबूत कर दिया। इंजरी टाइम में सेनेगल ने एक गोल करके अंतर को कम किया, लेकिन एम्बापे ने तुरंत जवाब देते हुए एक और बेहतरीन गोल दाग दिया।

0: को पार किया, साथ ही वो वर्ल्ड कप में 14 गोल करने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बनकर जुस्ट फोंटेन से आगे निकल गया और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वालों में वो अभी तीसरे स्थान पे आ गया। उसके आगे हैं क्लोजे और मेसी। फ्रांस का अगला मुकाबला इराक से होगा, लेकिन सेनेगल को बच के रहना होगा क्योंकि अगला मैच नॉर्वे के खिलाफ हर हाल में वापसी करनी होगी।
1: और अब बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर करेंगे अगले 24 घंटों के लिए। मौसम की पेशगोई, आज रात और कल सुबह पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो में बादल घिराएंगे और बारिश होगी और कुछ जगहों में कोहरा छाया रहेगा। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की सलाह है, खासतौर पर पश्चिम और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान, सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 17 से 21, अधिकतम 23 से 25। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:44 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:38 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें आप तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिवनाग्या की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार राधा, आप शोक समाचार सुनिए और MBC के साथ जुड़े रहिए।
1: News on MBC Play, MBC Play, MBCRadio.tv, MBCRadio.tv.
0: बोला रोड प्लैंड रोश में 76 साल की 76 years old श्रीमती पद्मावती मथुरा, श्रीमती पद्मावती मथुरा पैदाइशी नाम कल्पी जो दयावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सवा नौ बजे इनके बेटे राज मथुरा के घर बोला रोड प्लैंड रोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:15 AM। NHDC ग्रां बेलिया में 52 साल के 52 years old श्री मोगानादेन किसनासामी, श्री मोगानादेन किसनासामी जो अजागेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े बारह बजे इनके घर NHDC ग्रां बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दे क्रियोल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। आली ब्रियों वाकवा में 63 साल के 63 years old श्री सुखबीर रामचंद जो स्वराज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनकी पत्नी मालिनी रामचंद के घर आली ब्रियों वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली ब्रियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रॉयल रोड बॉडी जामुरत में 51 साल के 51 years old श्री सूर्यदेव सीबन जो सूरज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े ग्यारह बजे इनकी पत्नी रेशमा सीबन के घर रॉयल रोड बॉडी जामुरत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो लेन में बर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। मिशन क्रॉस रोड लालमाची में 69 साल की 69 years old श्रीमती ज्ञानती सुबा पैदाइशी नाम ज्योति जो अनीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज उठाई गई। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play, MBC Radio.tv.
2: You're listening to RM3 Radio. My

तो चलिए दोस्तों, शाम के 6:34 हो रहे हैं और एक बार फिर आ गए हैं हम आपके हम सफर बनकर ऑन द वेव्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन. मैं हूं परी आपके साथ प्रोग्राम हमारा नई सोच. और आज का हमारा ये प्रोग्राम सिंपल लेकिन बहुत ही गहरी बात के साथ शुरू हुआ है. कहते हैं ना दोस्तों कि खुशियां बांटने से कम नहीं बल्कि बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है. हम अक्सर सोचते हैं कि किसी की मदद करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा, बहुत वक्त या फिर कोई बड़ा काम करना जरूरी है. लेकिन सच बात तो ये है कि कभी कभी एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द या फिर किसी की बात को बस ध्यान से सुन लेना उनके दिन को रोशन कर सकता है. जिंदगी में हर इंसान अपनी कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा होता है. हमें उनकी पूरी कहानी कहाँ पता होती है, तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ी सी काइंडनेस, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी ह्यूमैनिटी बहुत बड़ा

फर्क ला सकती है सो बस अच्छे काम करते रहिए अच्छे कर्म करते रहिए और कहते हैं ना कि जो लोग दूसरों के जीवन में फूल बांटते हैं हाथ उनके भी महकते हैं तो अभी के लिए बस ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स कुछ प्यारी बातें आपसे हम शेयर करने वाले हैं मैं हूं परी आपके साथ और अगला गाना गोज आउट टू ऑल द मम्मीज टू ऑल द ममाज जैसे हम कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता था इसीलिए उसने माँ को बनाया तो अगर आपकी ममा आपके पास है आपके पेरेंट्स आपके पास है Always love them और जैसे हम कहते हैं do not wait कि मदर्स डे आएगा तब आप उन्हें विश करेंगे या फिर कोई खास दिन आएगा उनका जन्मदिन आएगा तब आप उनसे थोड़ा सा प्यार से बात करेंगे एक्चुअली एवरी डे ये करना ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई अनकंडीशनल लव आपको करता है इस दुनिया में तो वो बस आपके पेरेंट्स आपके माता पिता होते हैं सो ये गाना आ जाता है हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं दिन भर की थकान को दूर करने के लिए कुछ ऐसे गाने जो जिंदगी में पॉजिटिविटी लाते हैं थोड़ा सा हमें सोचने को मजबूर करते हैं और शायद चेहरे की मुस्कान बढ़ाते हैं सो एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए टू ऑल द मदर्स एंड टू एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैव अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ आरएम3 रेडियो मनोरंजन मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और कहते हैं ना दोस्तों कि जिंदगी के कुछ पन्ने खुशियों से भरे होते हैं, कुछ आंसुओं से, कुछ यादों से, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझने में पूरी उम्र बिता देते हैं। ये गाना भी ऐसा जहां पर जिंदगी के एक पहलू को समझाया गया है। ब्यूटीफुल सॉन्ग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नई सोच प्रोग्राम आपके लिए RM3 रेडियो मनोरंजन। मैं हूँ परी आपके साथ।

नहीं सो। बिल्कुल जैसे ये गाना था, बहुत ही प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, मासूम फिल्म से लिया हुआ। जैसे हम कहते हैं, ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है और ज़िंदगी हमें हर रोज़ 24 नए घंटे भी देती है, हर रोज़ एक नया पन्ना जिसमें हम जैसे चाहे जो चाहे वो भर सकते हैं। सो वाई नॉट हैप्पीनेस, वाई नॉट खुशियाँ, क्योंकि ये तो आप ही के हाथ में है कि आप अपनी जीवन की किताब को किस तरह से लिखना चाहते हैं। दोस्तों, कभी कभार हम इतना सोचते हैं कि हमने ये प्लान किया था, ये इस हिसाब से नहीं हुआ, हमने वो चाहा था लेकिन वो हमें नहीं मिला। दोस्तों, ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कभी कभी हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरी नीयत से कोशिश करते हैं, फिर भी चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे हमने सोचा था, और वहीं पर शुरू होती है बेचैनी, सवाल और फ्रस्ट्रेशन। लेकिन शायद कभी कभी हमें ये याद रखना चाहिए दैट हमें सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ना है, बिकॉज ही कैन सी द बिगर पिक्चर जो हम नहीं देख सकते। हम सिर्फ आज को देखते हैं लेकिन वो हमारा कल भी देख रहा है। हम सिर्फ एक रास्ता देखते हैं, वो पूरा सफर देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। मेहनत हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हर नतीजा अपने कंधे पर उठाना ये ज़रूरी नहीं। तो अभी के लिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ प्यारे गाने, कुछ प्यारी बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल होते हैं और शायद हमारे पास उन सभी सवालों के जवाब तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ही पॉजिटिविटी देते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो शायद हर सवाल का जवाब बन जाते हैं। जैसे हम कहते थे कि जो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभार हमें लगता है कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है, लेकिन शायद वी आर द चोज़न वंस। जैसे कहते हैं कि भगवान जो है वो अपने सबसे कठिन बैटल्स अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स को देते हैं, तो शायद आज आप जहां पर पहुंचे हैं बहुत कठिनाई से पहुंचे हैं, और जब आप उस सफ़र को देखते हैं तो आपको भी लगेगा कि अगर वो सब पार कर लिया तो आने वाले दिनों में भी जो भी आने वाला है सब पार करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी तो मिलती है एक बार, और उसे खुलकर जीना, हंसकर जीना, मुस्कुराकर जीना, ये ज़रूरी होता है। जैसे हमने कहा कि लीव इट

गॉड जैसे भगवान जो हमारे लिए सोचता है, ऊपर वाला जो हमारे लिए सोचता है, अक्सर अच्छा ही होता है. सो कीप फेथ, प्रे करते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए, और फिर देखिए जीवन में सब कुछ अच्छा जरूर होगा.

0: नई सोच।
1: तो जी हाँ दोस्तों, इस खूबसूरत सोच के साथ हमारा नई सोच प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला प्रोग्राम जो है दिलों की आवाज, जहाँ पर लेकर आएंगे कुछ प्यारे गीत। बस यही कहेंगे कि याद रखिए, हर सवाल का जवाब आज मिलना जरूरी नहीं, हर रास्ते को समझना जरूरी नहीं, कभी कभी बस चलते रहना जरूरी होता है और भरोसा रखना खुद पर ये जरूरी होता है। अपनी कोशिशों को पूरा रखिए और अपने दिल को हल्का रखिए, उम्मीदों को जिंदा रखिए और बस हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, जहां पर रोज शाम आपके लिए लेकर आते हैं हम ये प्रोग्राम नई सोच। जिंदगी के सवालों का जवाब शायद ना मिल पाए, लेकिन आपके इस खूबसूरत सफर का हिस्सा हम जरूर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं परी आपके साथ राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन। अगले गीत के साथ बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम दिलों की आवाज की ओर। आप कहीं मत जाइए, स्टे वेल कनेक्टेड। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250620 पर।
2: You're listening to RM3 Radio Mano.

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Time check, शाम के ठीक 7 बजे हैं.
4: साथी मेरे सुन तो जरा.
5: हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो. तुम चुप क्यों हो गए? बोलो.

0: दिलों की आवाज
1: तो चलिए दोस्तों, शाम का ये सफर, शाम का ये कारवां, शाम के 7:06, नमस्कार और प्यार भरा आदाब हमारे सभी लिसनर्स का। अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम करते हैं आपका हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है दिलों की आवाज, जहाँ पर शाम को हम सजाते हैं मोहब्बत के साथ और शाम को हम मोहब्बत के नाम करते हैं। तो मैं हूँ आपकी दोस्त परी और साथ रहेगा आपका और मेरा रात के 9 बजे तक। बात करेंगे यादों की, उन खूबसूरत एहसासों की जो जिंदगी को थोड़ा सा और हसीन बनाते हैं। चाहे आप किसी को दिल से चाहते हैं या फिर किसी की यादों में खोए हैं या फिर आप अपने सोलमेट के साथ हमारी इस शाम को एंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ हम भी एंजॉय करने वाले हैं कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स जो हम साथ मिलकर गुनगुनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250-6200 पर 5250-6200 इंतजार आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस का।

0: You're listening RM3 Radio.
1: जी हाँ दोस्तों, शाम के 7:16, ये प्यार ही तो है जहाँ पर ये प्यारे प्यारे गाने हम आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ गाने ऐसे जो दिन भर की थकान को दूर कर देते हैं, और आज तो मौसम भी काफ़ी आशिकाना। इस बरसाती मौसम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पेशली हमारे वो दोस्त जो शायद इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। आराम से ड्राइव करें, अपने डेस्टिनेशन पर सेफली पहुँचे। इन प्यारे गानों को सुनते सुनते मौसम को इन्जॉय करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे। एंड यहाँ पर आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस आप हम तक पहुँचा सकते हैं 5250-6200 पर 5250-6200। मैं हूँ परी, कर रही हूँ आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस का इंतजार। सुदेवी जी वाकवा से साथ दे रही हैं, आप डेडिकेट कर रहे हैं गाना ट्रियोले के दीदी ललिता और कुशाल परिवार के नाम। आत्माराम भैया, मालिंगा के सभी राम रतन परिवार, सभी के लिए प्यार और स्पेशल विशेज। तो यहाँ पर वी हैव एक और ब्यूटिफुल गाना, फिल्म है पापा कहते हैं, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, एक ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के लिए, आपके दिल को लुभाने के लिए, आपकी इस शाम को और भी म्यूजिकल और भी मैजिकल बनाने के लिए। कुछ प्यारे गाने चुनकर लाए हैं आप सभी के नाम, साथ देते रहिए ऐसे ही। मैं हूँ आपके साथ रात के 9 बजे तक, प्रोग्राम दिलों की आवाज़।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: तो दोस्तों कहते हैं ना कि प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो हमें एक बेहतर इंसान बना देता है। प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं तो आज उन्हें एक सिंपल सा मैसेज जरूर भेजिए, टेक केयर या फिर कैसी हो या फिर कैसे हो। कभी कभार ये दो वर्ड्स भी किसी के दिन को और खूबसूरत बना देते हैं। वैसे तो कहते हैं ना दोस्तों कि कभी कभी अनकही बातें भी बहुत कुछ कह जाती है। बहुत सी बातें हम कह नहीं पाते, कभी शर्म की वजह से, कभी ईगो और कभी वक्त की वजह से। तो अगर आपके दिल में भी कोई खास बात है जो आप किसी खास तक पहुँचाना चाहते हैं, हमें मैसेज भेजिए, शायद आज हमारा ये रेडियो आपके दिल की आवाज़ बन जाए। प्रोग्राम है दिलों की आवाज़, मैं हूँ परी आपके साथ, साथ दे रही हूँ आपका ऑन द वेव्स ऑफ RN3 रेडियो मनोरंजन, जहाँ पर इंतजार है आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस का। 5250620 पर 5250620। अभी के लिए यहाँ पर हमारा साथ दे रही हैं हमारी प्यारी सी शारदा जी। सभी सुंदर परिवार आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। कहते हैं मौसम रोमांटिक और ऐसे में ये गाने एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सो थैंक यू सो मच शारदा जी, इतने प्यार से आप हमारा साथ दे रही हैं। अगला गाना

का आपके नाम यहां पर मिस्टर विकास आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच आप इतने प्यार से गानों को सुन रहे हैं कहते हैं डेडिकेट करना चाहता हूं गाना फॉर वाइफ प्रिया जो आज अपना जन्मदिन मना रही हैं तो आज ऑन 17th ऑफ जून प्रिया जी आपको विश करेंगे अ वेरी हैप्पी बर्थडे बहुत-बहुत शुभकामनाएं बहुत-बहुत गुड विशेस हमारे पूरे रेडियो मनोरंजन टीम की ओर से साथ ही यहां पर अखिलेश आप भी हमारा साथ दे रहे हैं कहते हैं दिन भर की थकान को दूर करने के लिए बस रेडियो मनोरंजन के ये गाने और का ये प्रोग्राम बस आपने ये मैसेज हम तक पहुंचा दिया हमें बहुत अच्छा लगा तो बस ऐसे ही अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या फिर किसी खास के नाम एक मैसेज भेजना चाहते हैं तो इंतजार रहेगा आपका ऑन 5250 6200 5250 6200 पर

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की
1: आवाज। तो चलिए दोस्तों, शाम का ये कारवां अब रात की ओर बढ़ रहा है और जैसे हमने कहा कि आज मौसम थोड़ा सा आशिकाना हो रहा है, ऐसे में ये रोमांटिक गाने शायद आपके दिल तक पहुंच रहे हैं। मैं हूं परी आपके साथ दिलों की आवाज़ प्रोग्राम लेकर रात के 9 बजे तक साथ रहेगा आपका और मेरा ऑन रेडियो मनोरंजन। और इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं हमारी प्यारी सी रेहाना जी फ्रॉम फिनिक्स। कहते हैं बस ऐसे ही आराम करते हुए आपके गानों को सुन रही हूँ एंड एंजॉयिंग द सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच रेहाना जी, साथ दे रही हैं आप, जानकर अच्छा लगा। अगला गाना बहुत ही प्यार सी डेडिकेट होगा आपके नाम एंड विशिंग यू अ लवली टाइम हमारे इन प्यारे गानों के साथ। स्मिता हमारा साथ दे रही है क्यूपिप से और यहाँ पर एक स्वीट सा मैसेज, ये मैसेज है उनके हबी के नाम, दैट आई लव हिम सो सो मच। और एक प्यारा सा गाना आप डेडिकेट करना चाहती हैं उनके लिए और पूरे परिवार के नाम। बिल्कुल स्मिता, आपकी ओर से गाना फॉर योर ड्यूरेस्ट हबी एंड गोज आउट फॉर योर एंटायर फैमिली, फॉर ऑल योर लव्ड वंस। एंड वेल, यहाँ पर हमारी प्यारी सी विजया जी, आप भी हमारा साथ दे रही हैं और आपका साथ है तो बस हमें और क्या चाहिए। आपका साथ ही हमारे लिए खास और स्पेशल है और ऐसे ही साथ निभाते रहिएगा, इस प्यार को हम तक पहुँचाते रहिएगा। नंबर तो आप जानते हैं, ऑन रेडियो मनोरंजन हो रहा है आपका इंतज़ार 5250-6200 पर। इसी नंबर पर आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके दिल का हाल। अभी के लिए जो गाना आपने सुना, दैट वॉज इन द वॉइस ऑफ राहत फतेह अली खान एंड उनका साथ देती हुई द वन एंड ओनली श्रेया खुशाल। सो एक और ब्यूटीफुल गाना और यहाँ पर तुलसी कुमार एंड वंस अगेन सुनेंगे हम वंडरफुल वॉइस ऑफ राहत फतेह अली खान, एक गाना ऐसा जो दिल को बिल्कुल छूने वाला है। सो वेल, एंजॉय दिस वन।

तो चलिए दोस्तों, इट्स 7:57 और अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर, जहां पर कुछ और प्यारे गाने कर रहे हैं आपका इंतजार। अभी के लिए ज्ञान बिहारी जी हमारा साथ दे रहे हैं, आप डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर वाइफ सबिता, सिस्टर इन लॉ गीता, संजीव है साथ में, है सुनील, रानी और सभी RM3 लिसनर्स के नाम। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं परी आपके साथ, कुछ प्यारे गाने लेकर आई हूं आपके लिए ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन, प्रोग्राम दिलों की आवाज, आपका और मेरा साथ रात के 9 बजे तक।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़।
1: तो चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर वेलकम करते हैं हम ऑन द वेव्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन। मैं हूं परी, आपके साथ दिलों की आवाज़ प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। हमारे साथ ये प्यारा सा प्रोग्राम जहां पर रोमांटिक गाने, रोमांटिक बातें आपके लिए। कभी दोस्तों आपने नोटिस किया है, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कोई फेवरेट सॉन्ग, जिन्हें जितनी बार हम सुने उन्हें उतनी बार सुनना अच्छा लगता है। और कभी कभार कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा कर चले जाते हैं। लेकिन आई गेस दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, जो हमें इतना कुछ सिखाती है, कभी कभार रिश्तों के ज़रिए से, कभी कभार दोस्तों के ज़रिए से। सो यहाँ पर हम तो बस सेलिब्रेट करना चाहते हैं हर एक पल को आपके साथ। जैसे कि हमने कहा कि लाइफ इज़ ब्यूटिफुल और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो लेट्स मेक इट स्पेशल, लेट्स मेक इट खास, कुछ प्यारे गाने आपके नाम। और जैसे हम कहते हैं कि प्यार के बहुत सारे रंग होते हैं, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी दिल को थोड़ा सा दुखाता है। That's a beautiful song, अकेले हम अकेले तुम, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजें। साथ रहेगा आपका और मेरा रात के 9 बजे तक। कहना चाहते हैं आप भी कुछ तो आपका इंतजार 5250-6200 आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस के लिए।

0: RM3 Radio.
1: जिंदगी की भागदौड़ में अगर कुछ हमें सुकून पहुंचाता है तो वो होते हैं ये प्यारे गाने। और जैसे हम कहते हैं हर किसी का अपना एक प्लेलिस्ट होता है, हर किसी के दिल के करीब कोई गाना जरूर होता है। सो आई डू होप हमारी इस प्लेलिस्ट में आपके दिल को भी सुकून मिल जाए, आपके दिल

के करीब जो गाना है शायद वो भी आपको मिल जाए। अभी के लिए एक और प्यारा सा गाना आप सभी के नाम जो हमारा साथ दे रहे हैं। कनेक्टेड हैं आप ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक कुछ प्यारे गानों के साथ आपके दिल को बहला रही हूं। प्रोग्राम हमारा दिलों की आवाज। एंड फॉर नाउ एक और ब्यूटीफुल ट्रैक कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजें। एंजॉय दिस वन।

पर कहते हैं ना दोस्तों कि बेस्ट फीलिंग वो नहीं होती जब कोई आपसे आई लव यू कहता है, बेस्ट फीलिंग तब होती है जब वो उसे प्रूव करता है एवरी सिंगल डे। छोटी छोटी बातें होती है जो इंसान को स्पेशल फील करवाती है, और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ऐसी स्पेशल चीज़ें करते रहिए, जिंदगी को खूबसूरत बनाते रहिए। रात के 8:36 परी का साथ और रेडियो मनोरंजन लेकर आए हैं प्रोग्राम दिलों की आवाज, कुछ प्यारे गाने आपके दिल को लुभाने के लिए, आपकी इस रात को म्यूजिकल बनाने के लिए। सो यहाँ पर एक और प्यारा सा गाना, वंस अगेन दैट्स इन द वॉइस ऑफ कुमार सानू, उनका साथ देती हुई सपना मुखर्जी, प्यारा सा गाना लेकर आए हैं।

आप सभी के लिए उम्मीद करते हैं इन गानों को आप पसंद कर रहे हैं रेडियो मनोरंजन को चुनने के लिए शुक्रिया दोस्तों अगर आप भी हमारा साथ दे रहे हैं आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250620 पर अभी के लिए यहां पर सपना हमारा साथ दे रही हैं थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल मैसेज अच्छा लगा जानकर कि गाने आपको अच्छे लग रहे हैं ये जो प्यारा सा गाना है इसे डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम और भेज रहे हैं आपके लिए बहुत सारा प्यार और बस ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए गानों को एंजॉय करते रहिए और आपकी इस रात को खूबसूरत बनाते रहिए रेखा जी यहाँ पर आप भी हमारा साथ दे रही हैं तो ये गाना आपके नाम साथ ही सभी परिवार के लिए जो इस वक्त कटरबोन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं निर्मल जी यहाँ पर कहते हैं गाना हो जाए फॉर दैट स्पेशल समवन अभी थोड़ी सी रूठी हुई है और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए आई गेस दैट्स द परफेक्ट सॉन्ग एक ऐसा गाना जो दिल को धड़काने वाला है चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ाने वाला है और शायद उन यादों को ताज़ा करने वाला है सभी जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं ये प्यारा सा गाना आप सभी के नाम एंजॉय दिस वन

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए दोस्तों, इट्स 8:54. इसी गाने के साथ समय हो गया है कि मैं परी लूँ आपसे अलविदा. इतने प्यार से आपने मेरा साथ दिया शाम के 6:30 बजे से. तो बस यहाँ पर रात भर आपके लिए ऐसे कुछ प्यारे गाने चलते रहेंगे. थोड़ी ही देर में भोजपुरी प्रोग्राम से आप सुन पाएंगे, तो कहीं मत जाइए. स्टे कनेक्टेड रेडियो मनोरंजन के साथ, आपके मनोरंजन आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमेशा 24 घंटे आपके साथ. कुछ प्यारे प्रोग्राम्स लेकर आपके दिल को लुभाने के लिए हमेशा. तो आपसे इजाज़त लेती हूँ, मुलाकात होगी जल्द. तब तक के लिए जुड़े रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ एंड हैव अ ग्रेट नाइट.

0: धमाल और मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
1: भोजपुरी तड़का।

भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट, जलसा, हंगामा।

सब संगत यारों के और जय प्रताप सिंह के ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो और मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी तू उनकी फॉलो करता हुआ जहां से भी उनकी याद करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी तड़का अभी से लेकर रात की 11 बजे आज है बुधवार की रात बुधवार 17 जून 2026 और शाम के भी पानी बरसता कई इलाका में ठंडा ठंडा कर लगवा और तो मन करता को ना भी भोजपुरी गीत सुने कितने नंबर वक्त भैया का जगह देवी जगह बिचैक या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर भी सब अपन रिक्वेस्ट प्रस्तुत करें अभी से लेके रात के 11 बजे ली और चलो शुरू करें जाचा हमने के भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के साथ रोशन सरा सिंह की गावल गीत के साथ वंदना। चलो सुना वंदना का बोला था

और भोजपुरी चल का है भोजपुरी कार्यक्रम है जहां पर केवल भोजपुरी गीत चलाई रहा सर ठीक बा और फिर अगला गाना चलावती सा बहुत ही प्यारा सन गाना है हाँ गीतवा तो एकदम जोरी बा हाँ जवानी चंद्रदेव जुबोधन गीत वगैरह वन बहुत ही प्यारा सन गाना और है गीत अमित चलावत इस होलीलाल दिनू के बेटा विवेक दिनू के जन्मदिन बाद चढ़े मना प्यार आशीर्वाद होलीलाल दिनू की ओर से कर माँ कर पत्नी कर लड़का सब दिनू परिवार के ओर से अपने मोहताबा भविष्य गरुरे गीत और खतेर सोना दुलार के जन्मदिन बाद जरा प्यार आशीर्वाद सब जानकी प्रसाद परिवार के नाम और जयराज अंतिश अंकुश स्नेहा लालमाती से हमने के सुनतवन बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद भी चलो के देवत नहीं जा साथ में रानी जी के नाम रानी दुलार के नाम है गीत चौथी सा फिर रोहन मगर हमने के साथ देवतवन बहुत बहुत धन्यवाद फिर मुकेश हमने के साथ देवतवन किया ना ही रिहेलियो ना गीत और खातिर और जितना कोई हमने की रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर सुना था और हमने की रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर देखा था है गीत चलो के नाम भी चलावती सब बहुत बहुत प्यार के साथ टीना भी हमने के साथ जुड़ा हुआ तो चलो एक साथ सुनाए गीत जवानी खास हम खास विवेक दिनों के जन्मदिन बाद तो ढेर मना प्यार और आशीर्वाद सब दिनों परिवार की ओर से कर पापा होलीलाल कर माँ कर पत्नी और सब दिनों परिवार की ओर से

संगठन लोग बोला जाता कि जुलाई महीना से मॉरिशस एलनिनो में प्रवेश करी। एलनिनो एक क्लाइमेटिक फेनोमेनन है और बेशक जब एलनिनो आवेला था सकेला मॉरिशस में तापमान बढ़ जाए काफ़ी डिग्रीज देखे हैं और गर्मी के मौसम में सकेला बिल्कुल पानी भी नहीं बरसी और जलाशय में पानी कमती हो ले जाता और अगर एलनिनो के प्रभाव रही तो सकेला तन को पानी भी नहीं बरसी। तो ई एलनिनो जो रहा जाए 10 महीना ली शुरू हुई जुलाई 2026 के और समाप्त हुई मार्च 2027 में और बेशक है जो एलनिनो है दुनिया भर के प्रभाव करता है और जैसे कि हमने को ट्रॉपिकल टापू हुई सर तो हमने पर भी कर प्रभाव पड़ी और बोला जरा कि जहाँ पर जो चीज़ कबू नहीं दिखलवा वो सब बुझाई जोन पे में कबू लाशेस खिस नहीं आवा वहाँ लाशेस खिस रही जहाँ पर कबू पानी नहीं बरसलवा वहाँ पानी बरसी और जहाँ पर कबू लानेज नहीं आवा वहाँ सकेला लानेज भी चराए एक ही बोला ला एलनिनो। तो सावधान रह सी और दिखब सर कि कैसे है एलनिनो हमने पर प्रभाव करी शुरू हुई जुलाई 2026 से और समाप्त हुई मार्च 2027 में। अगला गीत मार ताली मार है गीत चलाओ थी सर खासम खास सब संगत यालो के नाम जो हमने के साथ जुड़ल बा है गीत किया ना है दियोना की ओर से बहन शिवानी और शादी होता है इसे मन की तदे बना प्यार और आशीर्वाद और है ये गीत चलाओ सर अब्दुल और सैरा बानो खातिर हेलो जी फिर वंदना के साथ होते हैं वंदना गीत और खातिर प्रेम और है गीत चलावते इस धीरज दया दीन खातिर प्रेमा की ओर से फिर है गीत करुणा के नाम रॉय है गीत और खातिर और है गाना वी विनुष्का के नाम जो नम के साथ देवत वंजा बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना कोई अभी जुड़ल बार रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर तत्वरार याद दिलाते जा कि अभी रात के 11 बजे हमने की और तो लोग के मुलाकात हुई है हुआ था और 11 बजे ये मुलाकात समाप्त हो जाती है। चल अभी चल जाए कुनाल हिदाल गया गीत मार ताली मार

मार ताली मार मार ताली मार रात के 9:25 और संगत है लोग हर बड़ी 21 जून के हमने मनावी रहा सर म्यूजिक डे संगीत दिवस डे बहते हैं के हाई त्योहार रही यानी कि हाई दिमाग के हमने मनाओ अब सर म्यूजिक डे तो हमने तो रोज के म्यूजिक डे मनाए रहा सर और आजकल म्यूजिक डे कॉलेज स्कूल में मनावल जाता ढे मना कॉलेज में और लिकुल में कर प्राइज गिविंग और म्यूजिक म्यूजिक डे एंड प्राइज गिविंग साथ में मनावल चला था लड़का लोग पर बाहर गलत अभी नाच गाना देफिले ये सब तो चला अच्छी बात बार संगीत दिवस हमने रोज के चला मनाया कि कहे कि संगीत जो है एगो बहुत अच्छा चीज है हमने के जीवन में ये हमने के स्ट्रेस और तनाव से दूर रखे ला जब भी तो हम मूड खराब हो या थोड़ा नहीं अच्छा लगता है तब बस अपन रेडियो ऑन करिए और सुनिए रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस अच्छा अच्छा गीत 24 घंटे तक के नाम चलेगा और ऐसा में चलाओ अब सर अगला गाना जयराज और रानी के लिए फिर है गीत रातीश के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ सुमिलाल नंदलाल है गीत तोरो खातिर शोभा है गीत तोरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ शुभ रात्रि तोरो बोलते हैं शोभा और अविसा है गीत तोरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और है कि तो अभियांश के नाम जो हमने के साथ

तिवतमंजा रात के 9:26 होता आकाश चेतन जी नमस्ते गीत तोहरो नाम दो सर तोहर सब परिवार के नाम और जितना कोई कोशिश करता थोड़ा लाइन नाम ही रहता है तो सब बचा टिकटॉक के जरिए पन में सास विदा करे टाइप करिए आगे जाइए इंटरनेट पर फिर नहीं आगे जाइए टिकटॉक पर फिर जाइए रेडियो मॉर्चस लाइव और उकर में अपन कमेंट भेजे जा शकीना है गीतोरों का तेर अगे मैं शोज अपन पालतू

रात के 9 बज के आधा हुआ था और उनके साथ दिया था बहुत बहुत धन्यवाद और गमटवा होते रही नाचब से गावब से झुमब से खूब मस्ती करब से रात के 11 बजे रही रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर और गुसंगतिया रहल मानियो लॉन्ग चिरे से काम करे तहल को नाम रहल पूनम त पूनम है गीत और खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और ये गीत प्रेमा देवेश यज वरुण के नाम और गीत जो है वो बोलता मार के फोरेरा बाप रे बाप नीरज को मधु जोड़ी गीत है ये गीत पूनम खातिर जो फसरी जीते बन के आ रहा है मानियो लॉन्ग चिले से सस ये गीत और खातिर साथ में ये गीत प्रेमा की ओर से देवेश यज वरुण के नाम वारियर की ओर से रातिश के लिए और पूनम हवन रोजबेल से और केशव और पूजा और माला जी गीत तोहर खातिर और आप हवन प्रचित खत से माला जी गीत और नाम राज रमी सर गीत तोहर खातिर मगर एल गीत और नाम फिर ये गीत अच्छा लगा तो ऐसा ये भी कुछ संगत्या बालाइन पे कुछ मिला जा टेलीफोन करा तो वन भैया कब से चलो कैसे मिल लेते तारे बोली टेलीफोन

0: नई दिल्ली। हेलो
1: हेलो, नमस्ते प्रताप जी।
0: नमस्ते जी, के हवा जा
1: हम है शोभा पॉपलेमूस से।
0: कैसे समाचार?
1: अच्छा, तू कैसे हो?
0: हम तो बड़ी गमत में हैं। तू गमत में
1: अच्छा,
0: हो?
1: अच्छा, हुई तो सुना थे ना, हम चले ली गमत वाले।
0: हाँ, तो अभी गमत वाले रात के 11 बजे थे, बोला।
1: हाँ,
0: हाँ, सुनब
1: सा,
0: हाँ, सबको संगे सुनब सा। संगे संगे। हाँ, एको गाना मगे थे।
1: मसाला की तकारी।
0: हाँ, कुछ पकेला हो?
1: नहीं तो ठंडा ठंडा कर बा ना।
0: हाँ,
1: तो मसाला की तकारी अच्छा लगला खाए के ना।
0: देखो कैसे जोरी से बनेला तब ना।
1: हाँ, आलू ली सुफले
0: है
1: बताओ के पकाता पका दो।
0: नहीं सुफले ढेर मांगा बामा
1: पासे नहीं मंगा हुई, मैं अच्छा लगला खाए के सब लेगी। हम कुछ मंगा के चीज खाए के
0: एता पुदे पैसों रही तब जा कर किनी ना माँ
1: ना ततनी एक लीबर निकल आधा लीबर सब बना किने।
0: हाँ, सकल जरा किने का
1: है, वो किने चला म्यूजिक कर किने का है, काम कर लिया सा
0: का जी नहीं
1: की ना।
0: हाँ,
1: अब खाली रमज़ बो हर चीज किन बो हो
0: छो छार के सब चीज जाके बारे बाप कुछ रमज़ बो
1: खाई बो पी बो तनी विटामिन खाई बो तनी दूध पी बो तनी तब ना हैप्पी रह बो
0: तब ना हैप्पी हैप्पी गीत चला वक्स
1: हैप्पी हैप्पी। हाँ, हमार गाना डाल दिया
0: अरे चला दियो सब फिक्र नहीं करिए शोभा। और अगला गीत विशाल जी के नाम और सब जन संगतिया SSU में काम करते हो। हेलो भाई जी, है गीत और खातिर और सब संगतिया जो SSU में काम करते इस समय और हमने की देखा था वन जा टिकटॉक पेज पर और रेडियो पर सुना था वन बहुत बहुत प्यार के साथ खुश है हमने के साथ वो था वन। हेलो जी, और फिर सरोज भी हमने के साथ वो था वन। चलो एक साथ सुने गीत मार के फोरेला। अब कौन सी फोरेला, चलो एक साथ सुने।

आज का फीफा वर्ल्ड कप 2026 चला था कनाडा और अमेरिका में और ढेर कोई सब मैच स्वी भी करा था वंसा और लेकिन एक मैगजीन भी बिचा था मैगजीनों में सब तोहर पसंदीदा के तोहर चुनने की भारत पे के जंतु बोते करा था और फोटो सब डाले के आजकल कॉलेज के लड़का लोग भी देखा थे इसे मैगजीन किन के फोटो कोले करा था वंसा अच्छा बहुत बहुत सबको क्या पर पसंद रहेगा और इसे में अगला गीत चली बर की मसाला पिसेला गुरुदेव मनाएगी तोहर खतेर साथ में माधवी जो मोहगी तोहरों नाम बहुत बहुत प्यार के साथ चलावते इसे और ये गीत हमने चलाव से संतोष यादव के नाम फिर रेखा रामा है गीत थोड़ो खतेर और है गीत चलावते इसे माधेश्वरी बिहारी खतेर बहुत ही प्यारा सन गाना रेखा रामा गीत और नाम शंकर थापा हमने के साथ देवत हवन और साथ में हबी हवन दीपशिका है गीत थोड़ो खतेर और अंजना अंजना समीर भाई हवन फोटो से वो भी हमने की सुना था वन और अभी कुछ एसएमएस की और बरफ सा और ये गीत अच्छा लाओ सा ओके माया जी के नाम रेल मोताई ब्लॉन्श बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत चली सुनील संभू जी के नाम बीना संभू रहरन बासे रोड काटबोन और है गीत चलाओ थी सज्जिता को इनके रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन प्रसन्नता टिकटॉक पेज पर हमने देखा था केयान सियान दुमर प्रियंका और अखिल दुमर के नाम है गीत बल्कि मसाला पिसेला कैसे मसाला पिसल जाना चले एक साथ सुने

0: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: हमें जब छोटा छोटा रही सा तो दुगो रेडियो सुना रही सा, एगो रहल रेडियो सेलन और एगो रहल विविध भारती आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। ये सब हमने सुन सुन के बड़ा होले सा। फिर बाद में हमने सुने सा रेडियो मॉरिशस और रेडियो सेलन रेडियो और श्रीलंका के रेडियो रहल और विविध भारती भारत के एगो रेडियो रहल जहाँ पर ढेर मना प्रोग्राम सुनते थे जैसे कि हवा महल, छाया गीत, आज के फनकार आदि आदि। तई सब प्रोग्राम सुन के अपनी बड़ा हुई सा और एमबीसी रेडियो के साथ भी जुड़ल रही जा छोटा से और आज ले भी और हमेशा एमबीसी रेडियो के कबो कोई नहीं सकेला भुलाई हाँ कि नहीं। और जन रेडियो है हमने की जिंदगी में एगो महत्वपूर्ण स्थान रखेला, क्या कि जब भी तोरा मन करी कोनो गीत सुने के तो सुने करके मंगवा तब चलाई रहा सर। अगला गीत चलावब सब मच्छी मरवा हमर नाम उत्तम भाई गीत तौर खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ उत्तम जी और साथ में पूनम हेमराज गीत तौर खातिर और उर्मिला है गीत तौर नाम चलावते ही सर। जितना कोई हमने टिकटॉक पर देखा था बहुत बहुत प्यार के साथ समीर भाई हवन फिर माधवी थैंक यू सो सो मच सब कोई के शुक्रिया बोला था कि तो लोग रेडियो भी सुना तो अब रेडियो के सक पर लाइव देखे भी। और मच्छी मरवा हमारा नाम है गीत तो जय हरलाल गेले वन तो चल एक साथ सुने गीत है गीत चला तो ऐसा माधव के ओर से चाचू साइलेंट के नाम और माधव अपन चाचा के बहुत बहुत प्यार करेला। कभी कभी वो वीडियो कॉल करके चाचा से बच्चा ला रात के सोने के बोला चाचा अबा मर लगे ना अय्या चाचा। तो माधव के ओर से है गीत होकर चाचू साइलेंट के नाम जगह वो बेहद प्यार करेला और चाचू साइलेंट भी अपन नेफ्यू माधव से बहुत प्यार करेला। तो चल एक साथ सुने गीत मच्छी मरुआ हमार नाम।

आजकल सर्दी के मौसम भर यानी कि ठंडा के मौसम और ऐसे में एगो लेगी जो ठंडा में खूब फूली रहा वो हक फूल गोभी यानी कि लीसू फ्ले बड़ी मजा लग रहा लीसू फ्ले खाई के एगो सब्जी और एकर ढेर प्रकार से तरकारी पक रहा है जैसे लीसू फ्ले अंडा मसाला में लीसू फ्ले के सलाद लीसू फ्ले आलू मसाला लीसू फ्ले आलू टूफे लीसू फ्ले भुंजर और लीसू फ्ले जो है ओकर मिनिमम से चाहना नहीं तो आइए करे कि कैसे कि ओकर में अब ओकर में प्रतिबिधि थी रहेला कुछ बोले सब बेबिसनी शनी शनी तो चाहना ओके जोड़ी से नहीं तो आइए करे कि गर्म पानी में डाले के निमन से धो देव तब के जोड़ी से सकबा पकाए और लीसू फ्ले मसाला के तकारी जो पकाई ला तो चाहना फाता कोची या दाल पूड़ी पकाए की हों कि नहीं तो लीसू फ्ले की तरकारी तैयार करते रहिए उनके याद करते रहिए और अगला गीत सुना जा कोरिया राजा है गीत चरावती से जिया छह दर्ज के नाम सुरमा गुलाम है गीत तोरो नाम सुनील है गीत तोरो खातिर रोज के उसे गीत चली सुचिता साधना खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ अनुराधा के नाम भी और चाची प्रभावती लोल जुन हवन नोबेल फोंसेम के साथ देवतवन है गीत तोरो खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ चल एक साथ सुने गीतवा कोरिया राजा

0: continuous music. RM3.
1: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर
2: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
3: रात के 10:03 हुआ था और तू सुनते हुआ रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस। साथ में हमने की टिकटॉक पेज पर दिखा था हुआ रेडियो मॉरिशस के, तो एक बार फिर सब संगत यालो के हमने स्वागत करते ही जा जहाँ से भी हमने की दिखा था हुआ सुना था हुआ सबको के स्वागत बा MBC स्थल पर। और ढेर कोई किस शिकायत रहेगा कि जब लोग प्याज काटे रन से तो लोग के औंक लगेगा, औंक में लोड़ चलावेगा। आज हम थोड़ा बता पिगोशन एग्वास चीज कि जब प्याज कटबता तो और औंक में बिल्कुल लोड़ नहीं आई का चला करे के एगो देखछी में थोड़ा सुन पानी आधा देखछी पानी भर लिया ओकर में प्याज आधा आधा काट दिया। एक मोटा प्याज आधा काट के ओके पनिया में डुबा दिया। अब पनिया में ओके छिलिया तो पनिया में ओके छिल दिया ओकर लापू पर निकाल दिला तो ओके कटिया पनिए में जब काट दिला तब प्याज ओके निकाल के बोल में दर रखिया तो हर आँख में से तनको लोड़ नहीं चुई। और अक्सर देखिए ऐसा कि हमने कि ढेर कोई संगतिया लोग जब प्याज काट रहे तो औंक लोड़ा जला रोवे लगे रहन सा तो ये सबसे बचे खातिर याद रखिए जब प्याज काटत हुआ तो एगो बोल में पानी डाल दिया और फिर प्याज वाके आधा आधा काट के आपको समेटिए काट के पनिया में डाल दिया। अब ओके छिलिया जब ओके छिल पनिया में तो थोड़ा औंक में से लोड़ नहीं चुई। और असल में अगला गीत को नाल ही लाल की गावल गीत था जोड़ी छोकरी से प्यार करीला। यह गीत हमें चलावत है इस संजय बिहारी की ओर से कल पत्नी सुरेखा और सब कल परिवार के नाम और इमानुएल ऑंगसिल SSS कॉलेज के सब स्टूडेंट्स टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ और वहाँ के रेक्टर के नाम और सेंटोबा SSS कॉलेज के सब स्टूडेंट्स टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ और रेक्टर के नाम और खासम खास ग्रेड 7 रेड के सब स्टूडेंट्स लोग के नाम है गीत। है गीत अच्छा चलावती से यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के बीए फ्रेंच एमए फ्रेंच और PhD फ्रेंच में एनरोल सब स्टूडेंट्स के नाम वहाँ के सब प्रोफेसर और लेक्चरर के नाम। तो चलो एक साथ सुने है गीत जोली छोकरी कुणाल हिरीलाल। है गीत चलावती से विपन के नाम जो इन बहुत प्यार से हम किस्मत वन स्वीटी और स्वीनी है गीत और नाम और जितना कोई हमने की MBC रेडियो पर सुना था और जितना कोई हमने की टिकटॉक पेज पर देखा था खासम खास रीता सीतालू हवन और एक गीत जो है अनुष्का की ओर से रीता सीतालू के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ। तो चल एक साथ सुने है गीत जोड़ी छोकरी से प्यार करिएगा।

रात की 10:10 हुआ था। अब हम तो लोग की कहानी सुना फाब्दुला फोंटेन के ला सिगाल ए ला फोमी, सिगाल और चुंटी की कहानी। तो बहुत साल पहले ला सिगाल जो रहल वो कुछ करत हल, वो हमेशा नाचे गावे खूब मस्ती करे और कुछ रमासत नहीं रहल। और चींटी ला फोमी जो रहल वो जो है छोटा छोटा पिटी पिटी टुकड़ा खाए के वो नमाज के रखत हल और सोचा दल की बुरा समय में काम ही आए। तो एक दिन लेता गाते हो गए सिकलो नाई लगल हवा पानी आवा था कुदबा आवा था। तो छोटी जो है सब पिटी पिटी रोटी और खाई के सब नमाज के रखे रहल अपन घर में। तो थी चीती तो अपन नमाज के रख रख बा। अब लासीगार के तो ठंडा लगा था, अब लासीगार आके तापी करा था फूमी के लापो। तो फोमी से बोला था हमके सकबर थोड़ा सुन खाए के दे। तो फोमी को से बोला था चींटी बोला था तू उतना दिन का करा तेरा खाए के नहीं नमस्ते वो। बोले हाँ हम तो नाचत अली गावत अली झूमत अली। तो चींटी को से बोले नाचा तला गावत अला तो अब नाच अब निमन से नाच। कहानी की सीख कौन सी है? कहानी की सीख ये है कि जीवन में चेहरा हमेशा कोनो न कोनो चीज रमास के रखे कि थोड़ा बहुत पैसा वैसा का है कि बुरा दिन में काम ही आई। अगर सब पैसा खर्च कर दे बुरा समय आए तब का कर। तो ये है कहानी के सीख और ये रहा ला सिगाल ए ला फूमी। तो चल अब अगला गीत।

सुनबजा बजा बोल सुना नहीं इनकी आवाज में और ये शुभम के नाम उन्हीं के साथ देवतन फिर राहवन एंजल भी उन्हीं के साथ देवतन चलो एक साथ सुने बजा बोल सुना नहीं इनकी आवाज में

दुनिया भर चारों बगल गोल गोली गोल और रात के 10:17 हुआ था और अगला गीत है सुंदर परी गिरीश रूपचंद की गावल गीत रॉबर्ट की ओर से स्वीट हॉट माया खातिर जो नरेन बोबास है फिर इंदिरा मथुर सिंह की ओर से राजेश और प्रकाश खातिर अनिता पेतो भाई गीत थोरोनाम और फिर हई गीत चरावती अभिसन के नाम जो इन पी सेवन के साथ जुड़ल हो जाए बहुत बहुत धन्यवाद और रावत भी उनके साथ बा थैंक यू जी सिमी भी उनके साथ वतन हेलो सिमी और ऑस्ट्रेलिया से अवन अजय और पूनम चिंताराम कर बेटा बाल गोपाल और सब चिंताराम परिवार के नाम रंभा हवन स्विट्जरलैंड से हेलो रंभा जी गीत और खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और सब लेखा परिवार के नाम और सब जानकी परिवार के नाम जोन रहन से गुडलैंड और फिर है गीत चली प्रिया सी बालक के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और इंदु के नाम भी

अब जरा मीरा बाई पर बत्याप सा मीरा बाई चुन रहर कृष्ण भगवान की भक्ति न रहर और वो कृष्ण भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गरल कि अपन घर राजपात छोड़ छाड़ के वो चलर कृष्ण भगवान की भक्ति करे और भगवान की भक्ति पहले करे से भक्ति में बहुत शक्ति रहेला वैसे ही सूरदास जुन रहल उतर कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहल तुलसीदास राम भगवान की भक्ति में तो सब कोई अपन अपन भक्ति में लीन रहे लंसा हो कि नहीं और यशामृता प्रताप जी तू हवा हाँ जी हम ही आई और जो प्रताप सिंह ऑन द मिक्स रात के 11 बजे ले तो जैसे मीरा की बात करी तो भक्ति में मीरा जो है वो सर्वोत्तम भक्ति कहालन कहे कि मीरा जो है ओके राणा विष दिलक वो विष पान करके वो अपन भक्ति में इतना लीन रह कि वो विष भी अमृत बन गया क्या बात है और बेशक अगला गीत झीली झीली यही बहुत ही प्यारा सन गाना उमेश दोहू गैले वन गीत यजना के नाम कल्पना वन फिर हई गीत चरावप्स प्रीति मात प्रीति और रिश्वत माता बदल के नाम ओकर माँ ओकर पापा और सब माता बदल परिवार के नाम मनीष चामी सिंह जी भी उनकी सुनोत्वर मनीष चामी सिंह गीत और कथी तो पत्नी तो तीन को लेकर तो हर माँ और सब अचानक सिंह परिवार के नाम हाय सर्वेश गीत तो खातिर और रवि भी उनके साथ देवोत्थवन हेलो रवि और साथ में है गीत चावती से साबुन और जिमी दुखिया के नाम सुदेश जसवा कर माँ और सब जसवा परिवार के नाम चिबुग लोंग राजा नानो स्टीव और प्रवीण भैरव है गीत थोरो नाम गंगाधीन मनीष है गीत थोरो खातिर और गीता भी उनके साथ देवोत्थवन तो सबको खातिर है गीत झीले झीले उमेश दोहू की आवाज़ में

भोजपुरी टेटकाट चलते रही रात की 11 बजे रही और भोजपुरी गमटो हुआ था तलों के संगे संगे हमने नाचा देसा गावा देसा झूमा देसा डोले डोले डोले रे मना डोले डोले डोले रे मना किशोर कीमिया गीतवा गेले वन और गीत हमें चलावा देसा आशा जानू के नाम कुमारी शुभम को दी आरती और सब परिवार खातिर और है गीत सब संगतिया के नाम अनिता हवन फ्लिकॉन फ्लैग से अनिता लाल जी मौदल बेस से शुभा पोमरे मुझसे और कमला दीन मोहताबा से हवन गीत और खदे डोले डोले डोले रे मना डोले डोले डोले रे मना चल एक साथ सुने गीत वा

संगचर कहाँ जाइबे कहाँ जाइबे अशोक कुमार भवानी के गावला ही गीत के संगे बोचोइतर का प्रोग्राम यहाँ पर ही समाप्त होता रात की 9 बजे से अभी हमने के साथ रचा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हमने के देखी खातिर हमने के सुने खातिर शुक्रिया तुम लोग के फोन कॉल्स एसएमएस खातिर भी बहुत बहुत धन्यवाद हमने के तुम लोग की मुलाकात होती रही रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भी और एक मुलाकात तक हम की इजाजत जाए से पहले बता दें 11 बजे सुना बस अगला प्रोग्राम सुनने पर और 12 बजे से कल फजीत के 6 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने समझ के तो लोग की मुलाकात होती रही एमबीसी रेडियो पर और एक मुलाकात तक हमने की इजाजत और जय प्रताप सिंह से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि बाय बाय लव यू गॉड ब्लेस नमस्ते

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे लवली लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। गिनिशा बड़े प्यार से आई है आप लोगों का साथ निभाने के लिए इस प्यारे से सफर में। आपका सुनहरे पल, आपका दिल से स्वागत है। आज फिर हम लेकर आए हैं वो अनमोल नगमे जो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जिंदगी के हसीन लम्हों का एहसास है दोस्तों। तो बस मुस्कुराइए और यादों की इस महफिल का हिस्सा बन जाइए।
1: देवाना

0: पलट।
1: दोस्तों, हर पुराना गीत एक खुशबू की तरह होता है, जैसे ही सुनाई देता है दिल पुरानी यादों के बाग में खो जाता है। आज के इस सफर में हम मिलकर उन यादों को फिर से महसूस करेंगे। तो बैठ जाइए आराम से और अगला नगमा आपके नाम।

कभी किसी गाने ने आपको अपने स्कूल की याद दिलाई है, या किसी अपनों की मुस्कान, या हो सकता है किसी का प्यार। वैसे भी आज के हर गीत में वही जादू छुपा है। तो बने रहिए हमारे साथ सुनहरे पल में। इस खूबसूरत से शो में हम लेकर आए हैं आपके मनपसंद गीत। तो चलिए अगला नगमा आप गुनगुनाइएगा जरूर, और अपने उन खूबसूरत यादों को फिर से याद कर लीजिए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: रात कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, एक प्यारा सा पुराना गाना दिल को फिर से ताजा कर ही देता है। आज हम वही सुकून और प्यार लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए इस खूबसूरत से शो में। वैसे जिंदगी बदलती रहती है, लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल में रहते हैं। आज उन्हीं एवरग्रीन मेलोडीज के साथ अपनी रात को यादगार बनाइए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पर।
1: जिम जिम

खबरों की दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास तब होता है जब एक गीत आपके दिल की बात कह जाए। शायद, बिल्कुल जी शायद, आज का अगला गीत भी आपके लिए कुछ खास हो, किसको पता।

अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं या बस आराम से बैठकर हमारा साथ दे रहे हैं, तो इस संगीत भरे सफर का मजा लीजिए। हर गीत एक नई मुस्कान लेकर आएगा। तो चलिए सुनहरे पल आपके नाम।

पुराने गीतों की बात ही अलग होती है मेरी जान, ना उनमें शोर होता है ना दिखावा, सिर्फ दिल से निकली हुई आवाज और रूह को छू लेने वाले सुर होते हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाइए अगले गीत में खो जाने के लिए।

खूबसूरत नगमे सुनाते सुनाते इस खूबसूरत शो का अंत में कब पहुंच गया हमें पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है जब इंसान इन खूबसूरत नगमों में खो ही जाते हैं, जैसे कि हम अभी अभी खो गए थे इस एक घंटे की सफ़र में। लेकिन दिल छोटा ना कीजिए, फिर से आएंगे एक और खूबसूरत सी सफ़र के साथ रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, सिर्फ सुनहरे पल में आपके लिए ऑन रेडियो मॉरिशस। हमें इजाज़त दीजिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान।

तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

तेरे झूठे कस्मे वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

रोते काय को हम।